जीवन जीवन एक संगीत है, जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे हो, हालात चाहे जैसे हो, मुस्कुराते ही रहिए।

किया हो तेरे वादा दर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग के प्रोग्राम में अब की बार तू प्यार है किसी और का, तुम्हें चाहता किसी और है।

चलो तुम छोड़ दो मुझको, चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस जाता हूँ। चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस लौट जाता हूँ, पर तुमको रास्ता बताता हूँ कि अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अब किसी के लिए पराया हूँ। शायद शायद मेरे सखम सिल जाए, शायद मेरे सखम सिल जाए, तुमको नया साथी मिल जाए।

क्या हुआ तेरे वाला दर भर गीत ब्रुकनहा सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। फाहोन हिंसाइन पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है, जैसे खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से न्यूज सीफ तक 3 5 2 8 2 फीड सीफ आपको तार करना है।

औरों का सफर के प्रोग्राम में आज कृष्णा कुमार कुन्नत यानी मशहूर गायक स्वर्गीय काका के बारे में बातचीत होगा। कृष्ण कुमार कुन्नत मिस्टर के पैदा हुआ दीर्घ अक्सुस अक्तनशेस्तक इंडिया का प्लेबैक सिंगर, न सिर्फ हिंदी लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, बंगाल और गुजराती गाना पेश किया। इंडिया से पॉप, रॉक म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक भी पेश किया। एक बेटा जिसका नाम कृष्णा और बेटी जिसका नाम है टमारा। मलेशिया से ओल्डर्स, माता पिता मलेशिया से थे और दिल्ली में बड़ा हुआ, न्यू दिल्ली में बड़ा हुआ। लगभग 3,500 गाना के ने गाया। जॉस ऑफ इंडिया, जब क्रिकेट इंडिया का क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल रहा था नीघ तक में, तो इंडिया का क्रिकेट टीम के लिए भी एक गीत पेश किया। बेटा कृष्णा ने गाया एक मस्ती गाना, एक मस्ती एल्बम बनाया और बेटी तमारा ने पियानो पेश किया। किकी किशोर कुमार और एस डी बर्मन को गुरु की तरह जानता थे। किकी कहते थे कि एक गायक का चेहरा मत देखना, उसके चेहरे पर मत आना, उसके आवाज़ पर आना। सही बात है दोस्तों।

वैसे किसी म्यूजिक अपलाय ने कभी नहीं किया, सिर्फ स्टीरी किया यानी फेरिस्ताइट दिल्ली का स्टीरी में, यानी फेरिस्ताइट में स्टीरी के बाद वो मार्केटिंग मैनेजर का काम किया होटल इंडस्ट्रीज में, नहीं फिर नहीं तक में मुंबई चला आया। उसी साल म्यूजिक टेप लुइस बांग को पेश किया और एक दो रोज़ के बाद यूटीफी ने उन्हें तार किया और एक जिंगल पेश किया अथवा तैंसी के लिए। चार साल के अंदर में 30,500 जिंगल्स किकी ने बनाया। लेस लिवर्स को अपन मेंटर की तरह जानते थे और आर बर्मन ने उन्हें बॉलीवुड में लाया। नीह में किकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम में गीत तरप तरप पेश किया। और वैसे तो फिल्म मिथुन का एक फिल्म था जिसमें किकी ने भी एक गीत पेश किया, बीते लम्हे। हम सब मिलकर सुनेंगे किकी के आवाज़ में बीते लम्हे।

1996 में सोनी म्यूजिक इंडिया का शुरुआत किया गया और किकी को सेलेक्टेड किया गया इसी म्यूजिक इंडिया में। किकी ने बनाए सोलो एल्बम पल, जिसमें गाने थे जैसे आपकी दुआ, यारो और पल। किकी को स्क्रीन अवार्ड मिला। स्क्रीन अवार्ड मिलने के बाद 8 साल किकी ने गीत नहीं गाया, म्यूजिक वर्ल्ड में भाग नहीं लिया। 8 साल के बाद आँख में एक एल्बम पेश किया, एल्बम हमसफर। वैसे तो किकी ने एंगल्स, रॉक, बालात वगैरह वगैरह अपन जिंदगी में गाया दोस्तों। वैसे किकी भी टीवी सीरीज के लिए बहुत से गीत पेश किया और स्टार परिवार में भी गीत पेश किया। उन्हें 2003 में अवार्ड मिला श्रिया घोषाल के साथ। किकी ने टीवी पे जैसे मैंने कहा बहुत से गीत गाए, वैसे पाकिस्तान का टीवी पे भी शो पेश किया और एक मशहूर गाना था पाकिस्तान टीवी पर, तन्हा चला। वैसे सबरी ब्रदर्स के साथ भी कव्वाली पेश किया, चलता सूरज। बहुत से इंडिया से बाहर बहुत से कॉन्सर्ट भी दिया। वैसे किकी 2015 में टीवी रियलिटी इंडियन आइडल्स में भी भाग लिया। 13 सितंबर 2015 में सोनी मिक्स बातों बातों में किकी ने तमिल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड उन्हें मिला, कनाडा प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, मलयालम फिल्म अवार्ड का उन्हें मिला, हिंदी फिल्म फेयर अवार्ड 2003, 2006, 2008 और 2009 में किकी को मिला, सी साइन अवार्ड 2004 में, आईफा अवार्ड 2004, 2006, 2007, 2008 और 2009 में किकी को मिला। दुख के बात यह है दोस्तों कि एक कॉन्सर्ट कलकत्ता में एक कॉन्सर्ट देने के बाद वो वापस घर आते थे और वही कलकत्ता में एक सीढ़ी के एक सीढ़ी पर से गिर पड़ा और तुरंत 23 साल के उम्र में मई 2002 के बात है जब किकी का मृत्यु हो गया। किकी दुनिया में नहीं लेकिन किकी के नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा।

सितारों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। पर आप चुन है प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है। प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ।

टिक टिक मेरा दिल बोले जीतू जितेंद्र का समय रहा उन दिनों में दोस्तों। फिल्म हम जोली का सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। वैसे जितेंद्र का पिता इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोना चांदी आप जाने नकली सोना चांदी का गहने बनाते थे। तो जीतू ने एक बार स्टूडियो में गया है गहना देने को, तो फिल्म डायरेक्टर ने जीतू को देखा, उससे बातचीत किया और कहा क्यों ना आप मेरे फिल्म में काम करने के चले आए। तो जीतू ने सोचा घर पर जाकर और पिता के साथ वो फिल्म मैनेजर के साथ पास गया और तुरंत उन्हें फिल्म गीत गाया पत्थरों में एक रोल मिला। उसके बाद टॉप एक्टर था अपने समय पे, यार फैफन शेस्तक तो निगरी सीफन तक जबले खन्ना ने ही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। तो जितेंद्र एक टॉप एक्टर था। अब की बार राजेंद्र कुमार जो जुबली कैसे लोग कहते हैं जो जुबली अवार्ड विनर या जुबली कुमार के नाम से भी लोग इन्हें जानते पहचानते हैं। सहरा बानू के साथ फिल्म अमन में काम किया, उसी फिल्म का सॉन्ग राफी साहेब की आवाज़ में।

सरद जयपुरी का लिखा हुआ गीत शंकर जय किशन के म्यूजिक पर पद्मश्री मोहम्मद रफी के आवाज में अभी आप सुन रहे थे। फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन है

कि एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। फाउन इंसानी पर आप चुन है, आप सुनेंगे दिल के बाद पियानो के साथ। के बाद पियानो के साथ चलेगा सिमी, फिल्म साथी का बात है। सिमी पियानो के पीछे बैठ गया है दोस्तों, और बगल में खड़ा हुआ है राजेंद्र कुमार और सामने विजयंती माला। और सिमी क्या फरमाएंगे अपन दिल का बात, आप खुद सिमी का दिल के बात सुनते रहना।

की बार आपन दिल के बाद पियानो के पीछे बैठ कर सुनाएगा राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार कहेगा, ऐ हुस्न जरा जाग, ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए।

साधना सो रही है, साधना जी सो रही है। जब ये म्यूजिक सुना, ये पियानो का आवाज़ उसके गले में, उसका कान में गया, और राजेंद्र कुमार का आवाज़, तो वो जाग गया और आहिस्ता आहिस्ता आकर राजेंद्र कुमार के सामने खड़ा हो गया।

राजेंद्र कुमार के आवाज़ का और राजेंद्र कुमार का दिल के बात अभी आपने पियानो के साथ सुना। दिल के बात पियानो से सुनाएंगे आपकी बार मनोज कुमार। मनोज कुमार पियानो बजा रहा है और सामने खड़ा हुआ है वहीदा रहमान और मुमताज़। मुमताज़ का चेहरे पे तो खुशी है लेकिन वहीदा रहमान का चेहरा तनी मायूस मालूम होता है। पता नहीं क्या हुआ, आप हो सकता है अगर आप ये गीत सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा हुआ या क्या हुआ है उस वक्त वहाँ पर। दिल के बाद पियानो के साथ

के बाद पियानो के साथ आप सुन रहे हैं और आपको मालूम है दोस्तों फिल्म संगम। इस फिल्म में एक फूलता दो काते यानी कि राजेंद्र कुमार और राज कपूर और फूलता प्यारी सी फूलता वैजयंती माला। तो दोस्तों में जब प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत का बात रहता है। राज कपूर साहेब, राज कपूर जी पियानो के पीछे बैठा हुआ है और राज कपूर के पीछे बैठा हुआ बैठी हुए है वैजयंती माला और उसके सामने राजेंद्र कुमार राज कपूर जी क्या फरमाते हैं। मुकेश की आवाज़ है दोस्तों, लेकिन ये फिल्म में राज कपूर ने प्लेबैक किया। राज कपूर के ये सॉन्ग है दोस्त दोस्त ना रहा, अपन प्यारी जिगरी दोस्त के लिए फरमाते हैं, सुनिए।

उस दोस्त नारहा के बाद आप जानते हैं दोस्तों, दिल में दर्द छा जाता है भी, न सिर्फ प्यार मोहब्बत में, लेकिन जब एक पिता बचपन में माता को और छोड़ के चला जाता है, तो आप जानते हैं किस तरह से एक माँ अपन बालक को पोसते रहते हैं। लेकिन बात यह हुआ है कि देव मुखर्जी पिता प्रदीप कुमार को पहचान लिया है, और प्रदीप कुमार अभी देव मुखर्जी को नहीं पहचाना कि वो उसका बेटा है। तो देव मुखर्जी पियानो के पीछे बैठे हुए हैं और सामने पिताजी खड़ा है, मुंह में एक सिगार लगाकर सुन रहे हैं ये गीत।

ढोल के बाद पियानो के साथ में अब की बार दोस्तों निखनी आतन शस्त्र की बात है। जब फिल्म ब्रह्मचारी पेश हुआ, शामी कपूर का प्यार था रायश्री से, लेकिन रायश्री ने शामी से प्यार किया और सगाई की प्राण के साथ। तो पियानो के पीछे बैठा हुआ है शामी और सामने बैठी हुई है प्राण और रायश्री, और शामी कपूर क्या फरमाते हैं सुनिए।

के बाद पियानो के साथ आप सुने एक आखिरी दिल के बाद पियानो के साथ आप सुनेंगे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार पियानो के पीछे बैठा हुआ है दोस्तों, और सामने बैठी हुए उदासी छाई हुए है चेहरे पर, बैठी हुई है वहीदा रहमान। और कुछ देर बाद आ जाते हैं, दिलीप के बगल में खड़ा हो जाता है मनोज कुमार। तो ये दोनों क्या फरमाते हैं मिलके, आप सुनिए दिल के बाद पियानो के साथ।

के बाद पियानो के साथ अभी आप सुन रहे थे दोस्तों फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन है। हमेशा आप फाहन हिंदुस्तानी सुनते रहना और हर एक काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दफ्तर से न्यूज सीफ तक फिर सीफ पर आपको तार करना है। ओ माजिरे आशा जी के आवाज़ में आप गीत सुनेंगे, फिल्म बंदे हार्ट का सॉन्ग है दोस्तों। ये फिल्म जिसमें मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, ओ माजी रे।

फिल्म बंदे हाथ का सॉन्ग मैं पेश कर रहा हूँ दोस्तों। इस फिल्म में मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। बात क्या हुआ है कि निखिल सीफन तक में जब ये फिल्म बन रहा था फिल्म के शूटिंग के समय, तो मुमताज अपन मर्सिडीज बेंज से आते थे और अमिताभ बच्चन वही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में, एक छोटा सा मोटर कार से आते थे। तो हमेशा जब मुमताज आ जाते थे तो अमिताभ बच्चन वहाँ दरवाजा के सामने खड़ा होकर इसका कार को तारीफ करते थे। शूटिंग के समय भी कार के बात मर्सिडीज बेंज के बातचीत करते थे। तो मुमताज ने सोचा ये आदमी को मेरा मर्सिडीज बेंज बहुत पसंद है। तो मुमताज क्या हुआ दोस्तों, एक रोज ये शूटिंग के बाद मुमताज निकल के चला गया और अमिताभ बच्चन के मोटर कार लेके चला गया और अपन मर्सिडीज बेंज वहाँ छोड़ दिया। आमने सामने एक दो लोग जो था उनसे कहा कि कह देना अमिताभ साहब से कि तोहफा के रूप में ये बेंज वो रख सकता है। तो अमिताभ बच्चन जब शूटिंग के बाद बाहर आया और देखा उसका मोटर कार नहीं है, वहाँ बेंज खड़ा हुआ है। तो लोग गया उससे कहा कि आपका कार जो है, तो अब मुमताज उन्हें लेकर चला गया है। तो अमिताभ बच्चन के से बताया भी कि तोहफा के रूप में आप इन्हें रख सकता है। अमिताभ बच्चन बहुत खुशी हुआ और बहुत तारीफ किया मुमताज जी को। और आप जानते हैं दोस्तों, मुमताज अमिताभ बच्चन ये दोनों लगभग 5 या 6 फिल्म बनाया। मुमताज उन दिनों में एक पुराना एक्ट्रेस था, कई फिल्म खेल चुका था, लेकिन अमिताभ बच्चन वही जैसे मैंने कहा कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। और अमिताभ बच्चन के उतना पैसा भी नहीं था उन दिनों में एक नया कार किने, तो एक पुराना सा कार लेकर स्टूडियो में आते थे। तो ये था अमिताभ बच्चन और मुमताज का कहानी फिल्म बंदे हाथ का।

हो माँ जी रे, आशा जी के आवाज में अभी आप सुन रहे थे गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, देवानंद का फिल्म गाइड का सॉन्ग किशोरदा के आवाज में, और साथ ही साथ लता

0: प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इशहार करे किसी और से, खुदा करे जिससे भी इशहार करे वो भी प्यार करे किसी और से।
1: वो जिसने गम लिया
0: आरंभ होता है क्या हो तेरे वाला दर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम।
1: प्यार को बेच दिया नशा दान
0: पहला दर्द भरा गीत माइटी मुकेश की आवाज में सताले ऐ जहां।

उड़ मेरे निगाहों से, दूर मेरे निगाहों से तुम जाया न करो, ऐसे मुझे तर पाया न करो, ऐसे मुझे तर पाया न करो। मिलने को बहुत चाहत है मुझे, मिलने के बहुत चाहत है मुझे, लेकिन मिलने के बाद जुदाई से डरता हूँ।

इतने कमजोर मत बनो, इतनी कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतनी कमजोर मत बनो कि आपको कोई तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाले खुद ही टूट जाए।

मुझे यूं भुला न पाओ के बाद जिंदगी है तड़पना, जिंदगी है तड़पना, तड़पना है जिंदगी। किशोरदा के आवाज में।

0: boy.
1: क्या हुआ तेरे और दर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। फाउन हिंदुस्तानी पर आप चून है, हर एक काम जो आपको रेडियो की सिरे कराना आप कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 905-2824 पर आपको तार करना है। आसमान पे आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने को।

कहो प्यार है तुमसे, अगर प्यार हो गए तो कह देना, मत छिपाना। ये हरियाली और ये रास्ता, फिल्म हरियाली और रास्ता का सॉन्ग है, मनोज कुमार एंड माला सिन्हा दोनों फिल्म में काम की। ये फिल्म देखने ट्वेल्थ शास्त्र में जो रिलीज हुआ, इन पर म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन नाइटिंगेल, लता के आवाज़ में आप ये गीत को सुनेंगे।

हरियाली और ये रास्ता, दोस्तों ये फिल्म जब बना निकली 2016 उन दिनों में माला सिन्हा एक बड़ा सा एक्ट्रेस था और मनोज कुमार का शुरुआत हुए था। तो इस फिल्म में मनोज कुमार को 1500 यूरो मिला था, रुपीस मिला था काम करने के लिए, और माला सिन्हा को मिलियन। जी हाँ दोस्तों, फिर भी मनोज कुमार को उस बात से प्रॉब्लम न था, वो जोर तो उसे फिल्म में काम किया। लेकिन एक एक एक बात था, जब शूटिंग के समय, जब मनोज कुमार का शूटिंग का समय होते थे तो हेमा मालिनी जाकर उसके आसपास खड़ा होकर और ताकते थे। तो मनोज कुमार ने एक बार में हेमा से मैंने कहा हेमा माला सिन्हा होना चाहिए। तो माला सिन्हा से पूछा मनोज कुमार की क्यों आपने मेरे शूटिंग के समय मेरे करीब आकर खड़े होते हैं। तो माला सिन्हा ने कहा मैं आपसे सीखना चाहते हो। तो माला सिन्हा एक पुराना एक्ट्रेस था, फिर भी मनोज कुमार शुरुआत किया था और कम पैसा पाया था, फिर भी माला सिन्हा मनोज कुमार से सीखना चाहते थे। तो इस यही बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि सीखने में कभी कोई पुरान नहीं होते, बूढ़ा या जवान नहीं होते, हमेशा लोग सीखते रहते हैं। सावन को आने दो। जैसे मैं सोचता हूँ तो सावन का महीना है, तो सावन तो हो गया है, अभी नहीं बीता, लेकिन जोर तो से सावन जारी है। तुम्हें गीतों में बांधूंगा, सावन को आने दो।

दिल में आज क्या है, आपने सुना मेरे दिल के कहानी दिल के बाद, और दिल के बाद आपकी दिल क्या कहते हैं, टिक टिक टिक टिक टिक टिक मेरा दिल डोले।

हाय बहनों, जब मुसीबतें आपके जीवन में आती है बिना रुके बारिश की तरह, तो फिर याद रखें कि आपकी सही सोच विचार हमेशा एक छतरी यानी एक छाता की तरह आपकी सहायता करेगी।

भाई बहनों, जीवन कठिन है क्योंकि हम बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि लक्ष्यों पर। ये वे तरीका है जिससे हम इसे देखते हैं और बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं, और जो हमें नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए। मित्रों, हमको सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए।

प्रिय भक्तों, परमात्मा कहते हैं कि न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा अमर है। तुम अपने आप को समर्पित कर दो, ये ही सबसे उत्तम मार्ग है। जो इस मार्ग पर चलता है वो भय, चिंता, शोक से मुक्त रहता है। जो कुछ भी करो, जो कुछ भी करो, मुझे परमात्मा को अर्पित कर दो। ऐसा करने से

मित्रों, अपने जीवन में कभी किसी को दोष ना दें। अच्छे लोग आपको खुशी देते हैं, बुरे लोग आपको अनुभव देते हैं और सबसे बुरे लोग आपको सबक देते हैं और सबसे अच्छे लोग आपको यादें।

शक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्व कार्यसु सर्वदा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

मनु के सेवा में मैं हूँ आपका सेवक संजय। और सुबह हो निकले है तो हम आपके साथ जुड़ गए हैं। सभी को शुभ प्रभात कहते हुए हार्दिक से अभिनंदन किया जाता है और कहा जाता है कि आज का एक दिन आप एक शुभ दिन हुए। जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए।

ईश्वर आपके हमेशा खुश रखे। स्वस्थ रखे और मस्त रखे। सभी दुखों से यही कामना है मेरा भगवान से। जिनका जन्मदिन है उसे बहुत सा बधाइयां दिया जाता है। जिस परिवार में कोई नया बच्चा जन्म लिया है तो उन्हें बहुत बहुत बधाई दिया जाता है। जो अभी निकलने वाले हैं नौकरी की ओर, उन्हें और शुभकामनाएं। और ये मत भूलना, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, ये मत भूलना कि उन्होंने इस बात का संदेश रखे थे कि ये मत सोच कि देश तुम्हारे लिए क्या करते हैं, ये सोच कि मैं क्या कर सकता हूं देश के लिए। जो सफर पे जा रहे हैं तो उनसे कहूंगा कि समय पे उपस्थित हो जाना अपना अड्डे पे। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए, तो ये तो आपको पता है, माँ सरस्वती को भूलना मत, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान देने वाले माँ सरस्वती या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। और जो हमारे देश में सफर करने को यानी कि वेकेशन से आए हैं तो उन्हें हार्दिक से स्वागत किया जाता है। सभी मेंबर्स जो है फाहोन रेडियो को हार्दिक से अभिनंदन। मैं जो आपके साथ जुड़ गए हैं और कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे।

किसी ने अच्छा कहा है कि चलो आज फिर से आओ मुस्कुराते हैं। चलो आज फिर से मुस्कुराते हैं, मुलाकात ना सही दिल से याद तो कर लेते हैं।

ऐसी लागी लगन। मीरा जो महलों में पली पर बनके निकली जोगी, आपका एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। कहते कि कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है, कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता। और इसमें यह भी जोड़ा जाता है कि धैर्य, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठा आते हैं।

लंदन से और डेन हाग से ये ब्रॉडकास्ट किया जाता है। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

दुनिया के हर एक प्रांत में इंटरनेट द्वारा सुना जा सकता है, जो इस समय अपने गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो उन्हें भी गुड मॉर्निंग। और ये कहना चाहूंगा कि जहां विश्वास है वहां प्रभु का वास है।

और इस बात के साथ में लेकर निकलिए। जिस प्रकार से अनूप जलोता जी ने अपने आवास में रखे हैं, कीमत कर अभिमान,

मत कर तू अभिमान, अनुप जलोता जी की आवाज़ में हम सब सुने। सुने वालों, इसी प्रकार से और भी सुंदर सुंदर भजनों के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं।

और ये बात हम जानते हैं कि ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। क्योंकि परिवर्तन संसार के नियम हैं।

प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, सुनने वालों इस बात पे हम थोड़ा से जब गौर करें तो अनूप जलोटा जी ने इतना सुंदर रूप से हमें ये संदेश रखे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, चंदन और पानी मिलेगा तभी आप टीका और तिलक लगा पाएंगे। क्योंकि वो उसका मिलाप से जा करके हम तिलक और टीका लगा पाएंगे और तिलक और टीका का ये सिर्फ मतलब नहीं है कि क्या आप कहीं सत्संग से आ रहे हैं। जैसे कि श्री तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि रामायण में श्री राम जी रघुकुल का तिलक कहलाए हैं। श्री राम जी जो रघुकुल का तिलक कहलाए हैं उस पे जरूर गौर करना। तुम चंदन मैं पानी, सुनने वालों इसी प्रकार से अनूप जलोटा का और जो सॉन्ग भजन कलेक्शन एक और गीत एक और भजन जो अनूप जलोटा के हम रखने वाले हैं

तोता राम। अनूप जलोता जी की आवाज में

तेरे की दिल से लिखी बातें, दिल से लिखी बातें दिल को छू जाते हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोग से मिलकर जिंदगी बदल जाते हैं। सभी को शुभ प्रभात कहते हुए आपका एक मंगलमय दिवस।

अनूप जलोता जी की आवाज़ में हम सब सुने ये सुंदर सा भजन उनके आवाज़ में। हम अभी न्यूज़ और कमर्शियल के ओर बढ़ने वाले हैं।

बेटे की दूध दही छाछ माखन घी सबके एक ही कुल के हो कर भी। दूध दही छाछ माखन घी सब एक ही कुल के होकर भी सबके समीप अलग अलग होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं कि सृष्टा जन्म से नहीं, सृष्टा जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, अपने कला और अपने गुणों से प्राप्त होती है।

अपने ऊपर और हम सबके लिए तैयार हुए हैं कि इतना कार्य को कर सके। अगर कुछ भी आपको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा करवाना है तो यह कतार का नंबर है 0 2 1 3 6 5 9 8। और दूसरा तार का नंबर है 0 3 6 5 2 2 4 7। और हम अपने जीवन में कुछ कर बैठे, क्योंकि हम आए हैं तो हमें एक ना एक दिन फिर वापसी है। और यहाँ एक सुंदर सा गीत हम चुन करके रखे कि मेरी कर्म माता

रू थोड़ा से बदल देता हूँ। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। और एक फिल्म जो हम शायद सभी देखे होंगे, फिल्म कुली से निकाला गया ये गीत, सारी दुनिया के बोझ हम उठाते हैं।

सुनने वालों, इस गीत को मैं इस कारण रखा कि कहीं गलती से आप सारी दुनिया का बोझ अपने सिर पे ना धल ले। क्योंकि लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यही के यही रह जाते हैं। क्या यही मेरा जिंदगी है? क्या यही हमारा जीवन है? कुछ ख्याल अपने यारों पे। एक फिल्म याराना जो बनाया गया नई खती नई न तख्त,

फिल्म याराना से। कभी इस बात पे ख्याल रखे, कभी आज इस बात पे ख्याल रखते कि जो पहले हमारे साथ होते थे प्रिय दोस्त, जो शायद आज आपके साथ नहीं है, पर वो यादगार बनकर साथ साथ है। क्योंकि कहा जाता है हमारे कुछ नहीं बचता, बस वही हमारे कर्म का यादगार के रूप में।

मेरा प्यार। सुनो वालों, ये सुंदर सा गीत एक पुराना फिल्म 1964 से निकाला गया। इस गीत को सुनकर के जरूर कुछ याद आया होगा। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं। गुड मॉर्निंग कहते हैं। आज पता नहीं आप क्या करने वाले हैं, पर हमारे दिमाग में जो दो घोड़े दौड़ते रहते हैं, एक जिनका नाम पॉजिटिव है और दूजा का नाम नेगेटिव। कौन घोड़े को आप ज्यादा खुराक देंगे उसी ओर के बढ़ेंगे।

अपने तो अपने होते हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से और कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से।

सभी को एक सुप्रभात। सूर्य को किरणों जो निकल चुके, मत भूलना सूर्य नमस्कार। और मैं हूं संजय, आपके साथ जुड़े हूं।

कहते कि जी भर के मीठा बोलिए जनाब, रिश्ते में शुगर की बीमारी नहीं होती है। जो अभी चून किए हैं फाहन रेडियो, तो आपको भी हार्दिक से अभिनंदन किया जाता है और एक शुभ दिवस प्रस्तुत किया जाता है।

0: बातें।
1: सुनने वालों, यहाँ तक था हमारे हिस्से के कार्यक्रम। आशा यह रखता हूँ कि आपके साथ जुड़े रहे और कुछ न कुछ आपको अच्छा लगे होंगे। और कहता हूँ कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।

आपको मुबारक हो, बधाई हो। कहते कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। कहती हूँ भी कि फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से कि इस दुनिया में जीना हो तो

फिर हम चलते चलते से आपके लिए यहाँ से हमने सुने हैं। शैलेंद्र जी और लता जी के आवाज़ में

0: महेंद्र कपूर हिट्स सॉन्ग हमराज से सुना दिया कि नीले गगन के तले।
1: ये शब्द हमारे समाज में सदियों से गूंज रहा है, कभी इसे जाति से जोड़ा गया तो कभी आर्थिक स्थिति नीच। ये शब्द हमारे समाज में सदियों से गूंज रहा है, कभी इसे जाति से जोड़ा गया तो कभी आर्थिक स्थिति से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म के वास्तविक ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं? क्या नीच शब्द का संबंध जन्म से है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क है? चलिए, नीच ये शब्द हमारे समाज में सदियों से गूंज रहा है, कभी इसे जाति से जोड़ा गया तो कभी आर्थिक स्थिति से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म के वास्तविक ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं? क्या नीच शब्द का संबंध जन्म से है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क है? चलिए सत्य की खोज करते हैं। हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भगवद् गीता जन्म पर आधारित भेदभाव को सिरे से नकारता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, अर्थात समाज का विभाजन गुणों और कर्मों के आधार पर हुआ है, न कि जन्म के आधार पर। शास्त्रों के अनुसार नीच वह नहीं है जो किसी विशेष परिवार में पैदा हुआ है, बल्कि नीच वह है जिसकी प्रवृत्तियां तामसिक हैं, यानी वह जो अज्ञान, क्रोध और हिंसा में लिप्त है। महान संतों और स्मृतियों के अनुसार व्यक्ति के कर्म ही उसे उच्च या निम्न बनाते हैं। शास्त्र चार प्रकार के लोगों को निम्न श्रेणी में रखते हैं। पहला, कृतघ्न, जो दूसरों के उपकार को नहीं मानता। दूसरा, अधर्मी, जो जानबूझकर दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। तीसरा, अहंकारी, जो सत्ता या धन के मद में अंधे होकर मानवता का अपमान करता है। चौथा, असत्यवादी, जिसकी वाणी और विचार में छल हो। यहां तक कि महान ऋषि वाल्मीकि और वेदव्यास के उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने अपने कर्मों से सिद्ध किया कि जन्म गौण है और ज्ञान सर्वोपरि। सवाल उठता है कि फिर समाज में यह भेदभाव आया कहां से? इतिहासकार मानते हैं कि बाहरी आक्रमणों और मध्यकाल के दौरान लचीली वर्ण व्यवस्था कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई। स्वार्थ और अज्ञानता के कारण कुछ लोगों ने धर्म की गलत व्याख्या की और नीच शब्द को जन्म से जोड़ दिया। यह धर्म की नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था की विकृति थी। आध्यात्मिक रूप से हर जीव के भीतर एक ही आत्मा का वास है। उपनिषद कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यदि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है तो कोई नीच कैसे हो सकता है? वास्तव में नीच केवल हमारे विचार और संस्कार हो सकते हैं, शरीर या कुल नहीं। आज के युग में नीच शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए करना न केवल असंवैधानिक है बल्कि अधर्म भी है। हिंदू धर्म की असली सीख वसुधैव कुटुंबकम में है। श्रेष्ठ वह है जिसका मन शुद्ध है और जिसके कर्म समाज के कल्याण के लिए है। अपनी सोच बदलिए, क्योंकि धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। नीच ये शब्द हमारे समाज
2: के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

0: जॉनी मेरा नाम, जी हाँ जॉनी मेरा नाम 1970 में पिक्चराइज है। हेमा मालिनी, देवानंद इसमें स्टार कास्ट है। हाँ, ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है।
1: खुद को बाहरी खतरों से बचाने में लगा रहता है, और जब हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है जो हर पल खुद को बाहरी खतरों से बचाने में लगा रहता है, और जब ये किसी खतरे का सामना करता है तो कभी कभी एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया देता है जिसे हम बुखार कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है बुखार आखिर होता क्या है और ये क्यों आता है? असल में बुखार हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कोई बाहरी हमलावर जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कोई विषैला पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाएं तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। ये हमलावर पदार्थ, जिन्हें पायरोजन कहा जाता है, हमारे मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से को संकेत भेजते हैं जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का थर्मोस्टेट है, यानी ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पायरोजन के प्रभाव से हाइपोथैलेमस शरीर के सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाकर एक नए ऊंचे स्तर पर सेट कर देता है। जब ये थर्मोस्टेट ऊपर सेट होता है तो शरीर को ऐसा लगता है जैसे वह ठंडा है, भले ही शरीर का तापमान बढ़ रहा हो। इसी कारण हमें ठंड लगती है, कंपकंपी होती है और शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। ये बढ़ा हुआ तापमान कई बैक्टीरिया और वायरस के लिए प्रतिकूल वातावरण बना देता है, जिससे उनकी वृद्धि धीमी हो जाती है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को उनसे लड़ने में मदद मिलती है। लेकिन फिर सवाल आता है, बुखार की दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, जैसे पैरासिटामोल या अन्य एंटीपायरेटिक दवाएं? ये दवाएं मस्तिष्क में PGE2 नामक रसायन के उत्पादन को कम कर देती हैं। यही रसायन हाइपोथैलेमस के थर्मोस्टेट को ऊपर सेट करता है। जब PGE2 कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को वापस सामान्य स्तर पर ले आता है और हमें राहत महसूस होती है। बुखार के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है संक्रमण, जैसे सर्दी, फ्लू, गले का संक्रमण या पेट का संक्रमण। लेकिन कभी कभी सूजन से जुड़ी बीमारियां, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कुछ दवाएं, अत्यधिक शारीरिक गतिविधि या हीट स्ट्रोक भी बुखार का कारण बन सकते हैं। इसलिए बुखार सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये अक्सर एक संकेत होता है कि हमारा शरीर किसी चुनौती से लड़ रहा है। एक तरह से बुखार हमारे शरीर का रक्षक है।

लता जी और रफी जी की आवाज में ये मौसम भीगा भीगा है। निखन तीन सीफन तक में पिक्चराइज किया गया ये फिल्म है और फिल्म का नाम है

अनुसार हमारी लंबाई का लगभग 80% हिस्सा हमारे जीन्स तय करते हैं। यानी अगर आपके माता पिता लंबे हैं तो आपके लंबे होने की संभावना भी ज्यादा होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बाकी का 20% खेल है हमारे खान पान और माहौल का। बचपन में मिलने वाला प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन्स हमारी हड्डियों के विकास को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि पिछले 100 सालों में दुनिया भर में लोगों की औसत लंबाई बढ़ी है, क्योंकि अब हमें बेहतर पोषण और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। नीदरलैंड्स के लोग दुनिया में सबसे लंबे माने जाते हैं, जहां पुरुषों की औसत लंबाई करीब 6 फीट है। इसका कारण है उनका संतुलित आहार, खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स का अधिक सेवन और एक स्वस्थ जीवन शैली। वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया और बोलीविया जैसे देशों में औसत लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है, जिसके पीछे है वहां की जलवायु, खान पान और जीवन शैली का असर। तो सच ये है कि हमारी लंबाई सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि जीन्स, पोषण और एनवायरनमेंट

हाँ चोरी पकड़ा गया, चोरी पकड़ा गया, उनसे मिली नजर। झुक गया आसमान से, निकाल दिया गया है लता जी के आवास में। कलाकार इसमें है शायरा बानू और राजेंद्र कुमार।

0: से हम सुनेंगे, अगर हम शराब पीते हैं तो उसका असर कहाँ से शुरू होता है और उसका असर क्या है?
1: क्यों? एक घूंट शराब पीते ही कुछ ही मिनटों में आपके दिमाग के अंदर केमिकल तूफान शुरू हो जाता है, और शराब आपके ब्रेन को अंदर से कैसे बदल देती है देखिए। पहले 5 मिनट में जैसे ही आप शराब पीते हैं, वो आपके पेट से सीधे ब्लड स्ट्रीम में घुल जाती है, और सिर्फ 5 मिनट में वो ब्रेन तक पहुंच जाती है, क्योंकि अल्कोहल एक छोटा मॉलिक्यूल है और आसानी से पानी में घुल जाता है। हमारा ब्रेन 70-80% पानी से बना है, मतलब अल्कोहल को सीधा रास्ता मिल जाता है। 5-10 मिनट बाद अब शुरू होता है असली खेल। यहाँ अल्कोहल बढ़ा देती है डोपामीन, जिसे कहा जाता है हैप्पी केमिकल। शराब पीते ही आप अचानक रिलैक्स, कॉन्फिडेंट और थोड़ा ओवर हैप्पी महसूस करने लगते हैं। स्ट्रेस गायब, टेंशन खत्म। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। 10-20 मिनट बाद अल्कोहल बढ़ाती है GABA, जो ब्रेन को शांत करता है, और ब्लॉक करती है ग्लूटामेट, जो ब्रेन को एक्टिव रखता है। नतीजा, जजमेंट कमजोर, इनहिबिशन खत्म। आप वो बोल देते हैं जो नॉर्मल में कभी नहीं बोलते। गलत फैसले, रिस्की बिहेवियर, सब यहीं से शुरू होता है। फिर 20 मिनट के बाद अब असर पहुंचता है सेरेबेलम तक, जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन संभालता है। तब चलते वक्त लड़खड़ाहट, बोलते समय जुबान लड़खड़ाना, रिएक्शन टाइम धीमा, यानी आपको नशा हो चुका होता है। और सबसे ज्यादा प्रभावित होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोच समझ कर फैसला लेता है, यानी आपका कंट्रोल सिस्टम कमजोर हो जाता है अगर ज्यादा पी ली तो। अब बारी आती है हिप्पोकैम्पस की, यही मेमोरी को संभालता है। रिजल्ट, ब्लैकआउट, आपको याद ही नहीं रहेगा आपने क्या किया, और ये सब सिर्फ 1-2 ड्रिंक से शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, अल्कोहल एक न्यूरोटॉक्सिन है, ये ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचाती है, ग्रे मैटर से कुड़ सकता है। नुकसान धीरे धीरे शुरू होता है।

एक बार फिर आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है आज के प्रोग्राम में, इस पल के प्रोग्राम में। खामोशी से मतलब नहीं, खामोशी से मतलब नहीं, बातों से है मेरे दोस्त। दिन तो गुजर ही जाएगा, मसला रातों का है। पल ये समय आपको बहुत सारे बधाइयां दे रहे।

0: Julia.
1: Dinner at 8?
0: Nah, not tonight, darling. Michael?

यही तो बात है, कल हो ना हो आज तो है, ये पल तो है, इसे में इसी के एक अच्छा यादगार बना लो। मौका इसी पल में है। कल हो ना हो टाइटल सॉन्ग से हमने सुने सोनू निगम जी के आवाज में, रोज सुन सकते हैं इतना मधुर आवाज में, और इसमें कितना मतलब है।

स्पेशल स्पेशल सॉन्ग्स आपके लिए चुनकर और लाई हूँ आज के वक्त में। फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से हम सब जुड़े हैं, स्पेशल स्पेशल आप ही के लिए है।

इसे जीने के लिए सिर्फ दो ही उसूल बना लो। हाँ, सिर्फ दो, रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। जिंदगी के हम सफर में, जिंदगी के हम सफर में हो तो बात पे यकीन तो नहीं था, पर तुम आए तो यकीन हुआ। और सफर जो है, सफर जो है मोहब्बत ही से भर गया है।

फिल्म दिल चाहता से सुने हम शेखर महादेवन शान और के की आवाज में कि दिल जो भी कहे परवा नहीं, हम तो अपना रहा सीधे चल रहे हैं। इन अतलीफन हुद्रक यह ओक है मैं लिफ मेंस भाई और बहनों इन अतलीफन हुद्रक यह ओक है नेम द तैत नेम द तैत और मैच दीर बारन त प्रातन व दू य आंदर्स में दि तैत अस दर नित मेर सें। अच्छा समय अच्छा गीत आपके लिए हमारे अच्छे अच्छे लोग जो सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। दुनिया के जिस गली में आप जहां भी जैसे भी हो आपका इंटरनेट है तो आप वर्ल्ड वाइड सुन सकते हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

के घुंघरू टूट गए इसी वक्त, वही से मैं यहाँ सोच कर और सोचते रहते कि घुंघरू कैसे ही टूट गए पता नहीं। मेरे दोस्त कहते हैं कि ये कहते हैं कि जैसे सोचोगे वैसा ही बनोगे। विचार ही आपकी पहचान है मेरे दोस्त, विचार ही आपके पहचान है।

फिल्म वार से निकाल दिया है जय जय शिव शंकर। सीटी भी बजा दी है। लेर तफर त्रावन

0: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा रुब्ररू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हैं और यहाँ से जो हम सब उपस्थित हो गए हैं स्टूडियो में, तो शांता जी और कोलेखा साथी बबली जी भी और पनेल के पीछे हमारे भाई राजेंद्र जी है, सभी अपना अपना एंट्री देते हैं। फिर उसके बाद में हम विषय जो आज का बड़े धमाकेदार है उसके ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों आप पहले शांता जी के सुन रहे हैं, फिर बबली जी को, फिर उसके बाद में राजेंद्र जी को।
1: रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे, रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम में या खुशी में साथ दे, रिश्ता वो है जो अपनापन का एहसास दे। सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम इस ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।
2: चुप रहना और अपने काम में लगे रहना भी एक कला है। इस संसार में जिसको भी ये आ गया वो बिना किसी आवाज़ के बुलंदियों पर पहुंच गया। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।
3: सबने अपना अपना शेर तो बड़ी जोर शोर से सुनाया, किसी ने चुप रहने की बात कही, किसी ने रूबरू मिलने की बात करी, शांता जी ने अपना सुनाया, लेकिन हम क्या सुनाएं। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को जो कि हम आगे सुनाएंगे सबके लिए नमस्कार। और इसी प्रकार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो सुनते रहिए, कुछ ना कुछ आज हमारा जो विषय है कश्मीर के ऊपर है। और
0: दोस्तों कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले हम हर सप्ताह की तरह, जैसे कि जिसका मन अभी उदास है, जो अभी अभी रेडियो को ऑन किए है और जो इस समय ये कार्यक्रम के सुनने के लिए, क्योंकि कितने लोग ये कार्यक्रम अन्य देशों में भी सुनते हैं, वहाँ शायद समय कुछ और होगा, तो सभी के लिए पहले हरिओम सरन जी ने सुंदर रूप से अपने वाणी से और जाकर के वो गीत से हम सबको और हम सब के लिए गाकर छोड़ गए हैं कि तेरा राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे। तो राजेंद्र जी क्यों ना हम वो ही गीत चलाते हैं पहले, फिर आज का विषय जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत में काफी संदेश है, पर और भी संदेश है दोस्तों, आप सुनते रहना। हम पहले वही गीत की ओर बढ़ रहे हैं जो हम सभी हर सप्ताह की तरह, तेरा राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे।

0: तो दोस्तों, अभी हम सब आगे बढ़ने वाले हैं ये विषय के लेकर, पर ये विषय आज जो हमारे विशेषज्ञ है ना, तो विशेषज्ञों ने कुछ और भी संदेश रखे। राजेंद्र जी, इसके बारे में आप कुछ पहले सुनाओ, तो फिर हम सब जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ेंगे।
1: हाँ, जो आज का विषय है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर है वो एक धरती का स्वर्ग कहा जाता है।
0: धरती का स्वर्ग।
1: हाँ, और जब धरती का स्वर्ग की बात आती है तो कश्मीर में क्या नहीं होता है। अखरोट होते हैं, ड्राई फ्रूट सारे होते हैं, केसर जो वहाँ का बहुत ही फेमस और पूरी दुनिया में नंबर वन का जो केसर कहते हैं वो कश्मीर में ही होता है।
0: महाराज इंद्र जी, ये बात है कि केसर आप कह रहे हो, पर केसर बोले तो हम लोग यहाँ कैसे हम जानते हैं शांता, हॉलैंड में
1: सफरान।
0: हाँ, सफरान उसे कहते हैं। दुनिया के वर्ल्ड सबसे ऊंचे क्वालिटी के वही,
1: सबसे ऊंची क्वालिटी का वही होता है। वहाँ के अखरोट, वहाँ का बादाम, वहाँ का नारंगी, मौसमी, सब चीज बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ऊंचाई वाला स्थान है और कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए सब चीज़ें बड़ी स्वादिष्ट वहाँ होती है। उसी कश्मीर के बारे में जब हम आज आगे की बात करेंगे कि वहाँ के राजा जो आखिरी राजा हुए,
0: बहुत अच्छा होता,
1: क्योंकि राजा करण सिंह, जब राजा हरि सिंह वहाँ के महाराजा थे तो राजा करण सिंह भी ऑलरेडी, उनका राजा करण सिंह की जय बोला जाता था उस समय। इसके बाद देश स्वतंत्र हो गया और फिर सब राजे रजवाड़े सब एक उसमें आ गए, भारत में सब विलीन हो गए। इसी प्रकार का आज हमारा कार्यक्रम जो होने वाला है कश्मीर के बारे में और राजा हरि सिंह के बारे में, उस पर प्रकाश डालेंगे।
0: तो राजेंद्र जी, क्यों ना हम पहले थोड़ा से उस ओर बढ़े, क्योंकि शांता ने पिटारा भर करके और गीतों को लेकर आए हैं, और हमारे सुनने वालों भी इस बात को जब कहीं मिलते हैं तो वो कहते हैं, शांता जो अपना पिटारा लेकर आते हैं, भला बताइए वो कैसा चीज़ है, वो क्या है। तो सुनने वालों, ये बात है कि ज़रूर एक ना एक दिन ये अवसर मिलेगा आपको शांता का पिटारा से और देखने के, और तथा यानी कि वो कहने के तात्पर्य ये है, जो अपना गीतों जो शांता जी लेकर हम सब के लिए खोज खोज करके इकट्ठा करके यहाँ उपस्थित होते हैं स्टूडियो में, तो क्यों ना पहले हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर अभी आज ये तेमा जो है, विषय जो है जम्मू कश्मीर, उस पे जरूर चर्चा किया जाएगा। पर राजेंद्र जी, हमारे सुनने वालों तथा हमारे विशेषज्ञों खास करके संदेश कुछ और भी रखे हैं, तो वो भी सुनाना पड़ेगा। पहले हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
1: जो गीत के बोल है वो है, कश्मीर की वादी में मेरी माँ का द्वारा।
0: कश्मीर के वादी में मेरी माँ का
1: द्वारा।
0: द्वारा, चलो सुना देते हैं।

0: कश्मीर की वादी में शेरों वाली माँ का द्वारा है। लखबीर सिंह लखा जी ने जो भजन गाया है बहुत ही सुप्रसिद्ध एकदम, उसमें बहुत ही प्रकार से लोगों को सराहनीय हो जाता है, सबको पसंद आता है, यानी सबको पसंद आता है इस प्रकार का जो लखबीर सिंह लखा ने भजन गाया। और कश्मीर का तो होना भी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग का जो धरती का स्वर्ग कश्मीर है उसके बारे में तो हर किसी ने अलग अलग प्रकार से अपना बयां किया है। तो इसी विषय में हमारा कार्यक्रम कश्मीर के विषय में जो आज का रहने वाला है, होने वाला है, कश्मीर की जो 10 बातें हैं।
1: राजेंद्र जी, जैसे कि आप कह रहे कश्मीर के बारे में हम सब आज विशेष बातें रखने वाले हैं, पर पहले राजेंद्र जी कुछ बातें और आए हैं और उन्हें तो पहले हम सब रख दे, ताकि हमारे सुनने वालों इस बात को भूले ना और इस बात को जानना बहुत क्या कहते हैं जरूरी है। अब जैसे कि राजेंद्र जी यहाँ बताया जाता है कि फलों से सीख जो हम सबको मिलता है ना, फल से, तो फलों से जो सीख हम सबको मिलता है कि जैसे कि गुजाबा, शांता जी गुजाबा पता ना क्या?
2: गुजाबा मेरे को पता है क्या है, खुयाफा,
1: उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अमरूद ना,
0: तो उसको बोल अंग्रेजी में गुआवा बोलते हैं, हिंदी में अमरूद,
1: ऐसा। तो फलों से सीख जो हम सबको मिलते हैं कि नमक लगाने पर भी स्वाद बढ़ जाते हैं ना उसे। अब कभी कभी तरबूजा बाजार से लावो, होलांत एक देश है जहां पर तरबूजा यानी कि वाटर मेलन ना कि हर समय मिलता है। सूरीनाम एक देश है जहां पर बस ख्रोतफकांसी में ना मिलता है
2: गर्मी के अनुसार।
1: और पर होलांत एक देश है जहाँ पर हर समय आपको और तरबूजा कोई भी फ्रूट कोई भी अपेगो एप्पल जैसे भाई
2: लगातार मिलते
1: हैं। हाँ, लगातार हमारे घर पे पेड़ से जो सेब एप्पल होते हैं ना, तो अगोरते हैं कि अब फूल ले लिया है, धीरे धीरे फूल से अब जब फल बन गया है और उसका तुराई जुलाई अगस्त में होता है कि हम सब उसे तोड़ पाते हैं ना। पर होलांत एक देश है यहाँ हर समय सब प्रकार के और फ्रूट मिल जाता है। पर कहने के तात्पर्य यह है नमक लगाने पर भी स्वाद बढ़ जाते हैं फलों से, फलों का ना, कच्चा आम जैसे भैल और इस प्रकार के अनेकों और फलों में नमक लगा दो
0: नहीं, जैसे नमक आम में न लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नमक अमरूद में और जामुन में काला नमक, अमरूद में काला नमक लगाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है, और जैसे केले में भी थोड़ा सा नमक लगाने से उसको अच्छा हो जाता है। इस प्रकार आम में नमक नहीं डालो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आम वैसे ही मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा है
1: आम जो फलों का राजा। पर राजेंद्र जी ये भी बात है, आम जो अंदर से यानी कि रंग उनका और क्या कहते हैं औरायों को, कैसे कहते हैं,
0: ऑरेंज
1: भगवा
2: भगवा,
1: हाँ जो रहे तो जान ले ये मीठा मीठा है। पर कभी कभी कोई कोई आम अपना मनमानी करते हैं तो हरा ही रह जाता है, तो उसे हम नमक लगा कर खा लेते हैं ना।
0: तो जो हरा रहता है वो कच्चा रहता है,
1: हाँ वो अपना मनमानी करते हैं,
0: फिर उसका अचार भी बना सके,
1: अचार भी बना सकते। पर कहने के तात्पर्य ये है
2: लोटस बनाता
1: है, लोटस शांता जी बनाते थे लोटस, आपको पता क्या?
0: हाँ जानी ला,
1: तो उसमें क्या डालते थे शांता जी, कैसे बनाते थे उसे?
2: नीमक मर्चा कसरीपो,
1: नीमक मर्चा और कसरीपो के साथ तो बहुत स्वादिष्ट हो जाता था, और उन्हें बना करके घाम में भी रखा जाता
2: था, थोड़ा सा घाम में धर देते फिर खाओ ना,
1: तो फिर खाओ ना। तो ये संदेश है कि फलों से सीखिए, नमक लगाने पर भी स्वाद बढ़ जाता है, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर उगलता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों। और आज का संदेश जो हमारे है, हमारा संदेश जो है कि जैसे कि जीवन में ये चाहते हैं कि हमारे घर से एक बेटा बेटी जन्म लेवे और वही हमारे बुढ़ापा का लाठी बनता ना। शांता जी इसके बारे में आपके क्या ख्याल?
2: बुढ़ापा का लाठी बच्चे
1: जी,
2: बच्चे आज आप तो ऐसे बोले जेके बच्चे ना, और जेके बच्चे नहीं तो
1: तो बुढ़ापा का लाठी नहीं रहेगा,
2: तो बुढ़ापा का लाठी नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा?
1: वही तो यही बात है। बबली जी, आप जरा बताइए कि उसके बारे में हम सबको क्या संदेश लेकर आए आज?
3: हाँ जी जरूर, बुढ़ापे का सहारा कौन होता है और कैसे? बुढ़ापे का सहारा बेटा या बेटी नहीं, बहू होती है। जैसे कि लोगों से अक्सर सुनते आए हैं कि बेटा या बेटी बुढ़ापे की लाठी होती है, इसलिए लोग अपने जीवन में एक बेटा या बेटी की कामना जरूर रखते हैं ताकि बुढ़ापा अच्छे से कटे। यह बात सच भी है क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है। बहू के आ जाने के बाद एक बेटा अपनी लगभग सारी जिंदगी अपनी पत्नी के कंधे पर डाल देता है और फिर बहू बन जाती है अपने बूढ़े सास ससुर की बुढ़ापे की लाठी।
1: बहू क्या बन जाते हैं? बूढ़े सास ससुर की लाठी,
3: बुढ़ापे की लाठी,
1: बुढ़ापे की लाठी।
3: जी हाँ, मेरा तो यही मानना है वो बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। एक बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या मालूम होती है, कौन कब और कैसी चाय पीते हैं, क्या खाना बनाना है, शाम में नाश्ते में क्या बनाना है, रात को हर हालत में 9 बजे से पहले खाना बनाना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाए तो पूरे मन या बेमन से बहू ही देखभाल करती है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या फिर कहीं चली जाए तो पूरे घर की दूरी हिल जाती है, परंतु यदि बेटा 15 दिन की यात्रा पर भी चला जाए तो भी बहू के भरोसे घर सुचारू रूप से चलता रहता है। बिना बहू के सास ससुर को ऐसा लगता है जैसे उनकी लाठी ही किसी ने छीन ली हो। वह चाय नाश्ता से लेकर खाने के लिए छटपटा जाएंगे, कोई और पूछने वाला उनके पास नहीं होता क्योंकि बेटे के पास समय नहीं, और अगर बेटे को समय मिल भी जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे यह मालूम ही नहीं है कि माँ बाबूजी को सुबह से रात तक क्या क्या देना है, क्योंकि बेटे के चंद सवाल हैं और उसकी जिम्मेदारी ख़त्म। जैसे माँ बाबूजी को खाना खाए, चाय पिए, नाश्ता किए, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वे क्या खाते हैं, कैसी चाय पीते हैं। यह लगभग सभी घरों की कहानी है। मैंने तो ऐसी बहुएं देखी हैं जिसने अपनी सास की बीमारी में तन मन से सेवा की, इसलिए मेरा मानना है कि बहू ही होती है बुढ़ापे की असली लाठी। अपनी बहू में सिर्फ कमियां मत ढूंढें, उसकी अच्छाइयों की कदर करें, बहू की त्याग और सेवा को पहचानिए। बेटे या बेटी से पहले बहू को अपना मानिए। मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरा बेटा मेरा अभिमान भी छोड़ो, बहू मेरा अभिमान बोलो। बेटी साल में 65 दिन सेवा करेगी, बहू 300 दिन आपके पास रहेगी।

0: तो दोस्तों सुनने वालों, ये संदेश हुआ बबली जी ने लेकर आए अपने और बुढ़ापे का सहारा। तो शांता जी, इस पे आप क्या कहने वाले हैं? बुढ़ापा का सहारा।
1: हाँ, तो ये जैसे बबली ने बताई ना, तब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मिलजुल कर रहना, एक दूसरे को समझना, समझाना और समझ के रहना।
0: राजेंद्र जी, क्यों ना हम एक और गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और आज का विषय जो हमारे बड़े धमाकेदार है, जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के, और जैसे कि अभी सुनने वालों से इस बात को सुना ही चुके हैं शांता जी कि जम्मू और कश्मीर में थोड़ा अंतर है ना, और अंतर क्या है, पर और भी काफ़ी संदेश है जो हम सब रखने वाले हैं। पहले हम एक और उसी, और क्या कहते हैं उसे राजेंद्र जी, शांता का पिटारा सा निकाला हुआ।
2: हाँ,
0: तो सभी सुनने वालों को सुना देते हैं।
2: ऊंचे पर्वतों पे मैया का बसेरा है।
0: ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे मैया का बसेरा। हमारे सभी सुनने वालों, जो इस समय खास करके जो इस समय काम भी करते हैं ना, कोई जो जैसे कि हमारे रई इंस्ट्रक्टर होते हैं जो इस समय अपने और शिक्षक को लेकर के कार में और चला रहे हैं और ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो आप सभी को लिए भी, और जो इस समय रास्ते पे है, जो अपने गाड़ी में भी ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और ख़ास करके राजेंद्र जी, बात तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हुआ कि हमारे श्रीमती लक्ष्मण जी ने
1: जी,
0: श्रीमती लक्ष्मण जी ने हमारे सभी कर्मचारियों के लिए, और जा करके ठंडी आने वाले है, और सभी के लिए शाल और मिर्च का और तैयारी करके और ला करके फौन हिंदुस्तानी में रेडियो में पहुंचाए हैं। तो दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हर बार, और हम सब के लिए भी कुछ ड्रिंक आदि भी तैयारी करके, मिठाई आदि लेकर के यहां उपस्थित हो जाते हैं। हम सब जरूर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी, पूरा टीम फाहौन की ओर से। और ऐसे हमारे कार्यक्रम सुनते रहना, जरूर हम नवन संदेश लेकर आपके साथ जुड़े रहेंगे। क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर चलते हैं राजेंद्र जी, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
2: जरूर।

ऊंचे पर्वतों पे मैया का बसेरा है, और जहाँ जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत है वहाँ तो भर देवता विराजमान हैं। जैसे केदारनाथ में शिव जी हैं, बद्रीनाथ में विष्णु जी हैं, गंगोत्री में गंगा मैया है और यमुनोत्री में यमुना मैया है। इस प्रकार से ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे मैया का बसेरा रहता है। लेकिन अब हमारा समय हो रहा है किसकी तरफ, न्यूज की तरफ समय जा रहा है। तो हम न्यूज सुनेंगे थोड़ी देर, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।

0: तो ऐसा है तो ये कार्यक्रम जरूर सुनते होंगे मामा जी। तो अगर आप इस पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि वजन इससे भी घटता है, और पर सिर्फ वजन नहीं है, शांता जी भी कुछ कहने वाले हैं। राजेंद्र जी
1: जी
2: यानी कि लौ वातर में होने डाल के और नींबू
0: नींबू
2: लमचे।
0: पर इसमें तो संदेश कुछ और है मेरे ख्याल से राजेंद्र।
1: हाँ, अभी और है, काफी संदेश है। हम आपके लिए लेकर आए हैं गुनगुने पानी के साथ शहद का सेवन करने के फायदों के बारे में। अच्छे पाचक पाचन के लिए सुबह गर्म पानी में शहद और नींबू मिलाकर पीना चाहिए।
0: पर राजेंद्र जी ये तो बताओ, पाचन अब थोड़ा अब हम लोगों है कुवाटा, भिंडी डाम, लिफोर्नो और ऐसे सरमक्का,
1: पाचन यानी
0: तो सर नाम में थोड़ा ना
1: भोजन खाते हैं वो अगर पचे ना मोई से तो पेट में पड़ा रहे, तब जब पचता नहीं तो सड़ जाता है, सड़ जाता है तो
0: पचानी का।
1: हाँ, पचानी का
0: ऐसा।
1: तो इसलिए शहद में नींबू मिलाकर पीना चाहिए, या पेट को साफ करने में मदद करता है और लीवर में रस के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे पाचन में मदद मिलती है। नींबू में मौजूद एसिड आपके पाचन तंत्र में मदद करता है और अवांछित विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा शहद एक एंटीबैक्टीरियल के रूप में कार्य करता है और आपके शरीर में मौजूद किसी भी तरह के संक्रमण को दूर करने में मदद करता है और कब्ज को भी दूर करता है। कब्ज दूर कैसे करें इस बारे में भी समझना होगा।
0: तो अब ये तो बात बता दो, कब्ज क्या चीज है?
1: कब्ज मतलब जैसे हम जो भोजन खाते हैं और वो वहीं जम जाता है, पेट से साफ नहीं होता, तो रुका हुआ पेट में भोजन को कब्ज कहते हैं।
0: ऐसा
1: ऐसा।
0: तो ये भी गुनगुना पानी और नींबू और शहद से इसका भी।
1: हाँ, ये मिश्रण जो है कब्ज के लिए तत्काल उपाय है, मतलब तुरंत काम करता है, पेट साफ हो जाता है। या आंत का प्रोत्साहित कर मल त्यागने में मदद करता है। इसके अलावा यह आंत म्यूकस में बढ़ावा देता है, म्यूकस यानी उसका लुब्रिकेशन। पेट को हाइड्रेट करता है और सूखे मल को पानी में भिगो देता है। इन सब की एक साथ मौजूदगी से मल त्यागने में मदद करता है। लस्सी का प्रणाली की सफाई इसमें मददगार। लस्सी का प्रणाली में पानी और आवश्यक तरल पदार्थ की कमी हो जाती है, जिससे आपको सुस्त और रुका हुआ महसूस होना, कब्ज, सोने में परेशानी, उच्च या निम्न रक्तचाप। यानी रक्तचाप का मतलब है जो ब्लड सर्कुलेशन ये तो तेज हो रहा है या कम हो रहा है, तो रक्तचाप उच्च या निम्न नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए,
0: रुद्रक जो कहते हैं ना।
2: और जब कब्ज होती है तो पेट में बहुत दर्द भी होता है,
1: बहुत दर्द। तनाव और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। सुबह सुबह इस मिश्रण को पीने से लसीका प्रणाली को हाइड्रेट होने में मदद मिलती है, जिससे न केवल सभी उपरोक्त लक्षणों बाकी प्रतीक्षा प्रणाली में भी सुधार होता है। इस प्रकार से इन चीज़ों में सुधार होता है। अब हम बात करते हैं मौखिक स्वास्थ्य में सुधार। जो स्वास्थ्य में सुधार कैसे होना चाहिए, एसिडिटी प्रकृति का नींबू, शहद और गुनगुने पानी के साथ सांसों की बदबू को तुरंत दूर करने में मददगार होता है। नींबू अपनी लार ग्रंथियों को सक्रिय और आक्रामक बैक्टीरिया को मारकर मुंह शुद्ध करने में मदद करता है। सांस में बदबू का कारण जीभ पर सफेद परत का गठन मुख्य रूप से खाद्य और बैक्टीरिया से मिलकर भी है। यह रस इस परत को प्रभावी ढंग से हटाकर सांस की बदबू से प्राकृतिक रूप से छुटकारा दिलाता है और मूत्रवर्धक में रूप में कार्य, शहद में बहुत ही शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल के रूप के गुण होते हैं।
0: ये सब सिर्फ वो सुबह
1: नींबू और शहद गर्म पानी गुनगुने पानी में डालने से ये सब चीजें ठीक होती हैं।
0: तो राजेंद्र जी, जरूर हमें तो इस बात को पता है कि फाहून हिंदुस्तानी रेडियो हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक अपना अपने ओर से और मौका मिलता है हम लोग के संदेश सुनाने के लिए, और जो अन्य देशों में भी ये कार्यक्रम को सुना जाते हैं, तो क्यों ना हम एक सुंदर सा और गीत के ओर, क्योंकि ये बात है राजेंद्र जी, हमारा जब बुढ़ापा आते ना, तो कुछ बातें हमें हर बार ख्याल आता है कि अब तो बच्चे भी परिंदे जैसे हो गए हैं, अब तो बच्चे भी परिंदे जैसे हो गए हैं, साथ रहकर बड़े होते हैं और बड़े होकर भी उड़ जाते हैं। तो जब उड़ जाते हैं तो आपको अपना सेहत के भी ध्यान देना चाहिए, आप कैसे और क्या कर सकते हैं, जरूर इसमें कुछ संदेश है जो हमारे पास रखा जाता है और उसे आपके लिए हम सब कोशिश करते हैं रखने के लिए। हम सब एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे और फिर गीत के बाद ये संदेश पूरा नहीं हुआ ना राजेंद्र जी?
1: नहीं, अभी थोड़ा सा एक बार और रहेगा।
0: तो एक बार और रहेगा ये संदेश जो जिसमें महत्वपूर्ण बात है, गरम क्या कहते हैं,
2: गुनगुने पानी
0: लव वाटर में मिलाकर नींबू और
2: शहद
0: कहते हैं राजेंद्र जी,
1: हनी को।
0: तो वो उसमें कितना ताकत है, कितना वक्त द बलांगराई का एसेंसिस दरफान और वाचे दरमियाई काम बराई का। तो दोस्तों हम एक सुंदर से गीत के ओर, पहले बबली जी कुछ कहने वाले हैं,
2: क्योंकि उसमें नींबू अपना असर करेगा, शहद अपना असर करेगा और पानी अपना असर करेगा, जब तीनों चीजें मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा।
0: ऐसा होता है तो राजेंद्र जी, ऐसा क्यों ना वही पिटाड़ा में और जो कंप्यूटर में हम लगा चुके हैं शांता जी जो खोज करके लाए।
1: हाँ, जो गीत के बोल है, ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतर आओ माँ, चला देते हैं।

0: ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतराओ माँ। अगर माता जी नीचे उतराई फिर लोग ऊपर कैसे जाएंगे?
1: इस बात पे जरूर कुछ कहना चाहूँगा कि हिसाब किताब तो सिर्फ ऊपर वाला ही, और हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाला ने ही सही और लगाया करता है। सबको खाली हाथ भेजते हैं और खाली हाथ बुलाया करता है। तो दोस्तों, अभी आप जो संदेश सुन रहे राजेंद्र जी के ओर से कि सुबह में और जा करके जो गर्म पानी लव वाटर से और मिला करके नींबू और शहद जो होनिंग कहा जाता है, कितनी कितनी और चीज़ों के लिए लाभदायक है, राजेंद्र जी हम सबको आगे और सुनाइए।
0: आगे का संदेश इस प्रकार है कि इसमें कई प्रकार के संक्रमण को दूर करने की क्षमता भी होती है। नींबू और पानी के साथ यह मिश्रित एक उत्कृष्ट आपके शरीर से बाहर निकालने वाला एजेंट के रूप में कार्य करता है। यह आपके मूत्र मार्ग को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से पीड़ित महिलाओं के लिए यह रस का एक वरदान की तरह साबित हुआ है, क्योंकि यह संक्रमण को दूर करने में मदद करता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है। शहद और गर्म पानी से शरीर में एनर्जी में भी वृद्धि होती है। शरीर से ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होने से शरीर का मेटाबॉलिज्म और कार्य प्रणाली में भी वृद्धि होती है। शहद शरीर के अंगों को ठीक से काम करने के लिए प्रेरित करता है। सुबह में गर्म पानी नींबू के साथ लेने से आप दिन भर ऊर्जावान बने रह सकते हैं। वजन घटाने में मददगार किस प्रकार होता है? शहद और नींबू के साथ गर्म पानी लेने से भूख कम लगती है। शहद और नींबू के साथ गर्म पानी में बड़ी मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, जो भूख की इच्छा और शुगर लेवल को कम करके पर्याप्त एनर्जी प्रदान करता है। इस प्रकार से नियमित रूप से सुबह इसका सेवन करने से दिन भर में आपके द्वारा लिए गए भोजन की मात्रा कम हो जाएगी। अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी के साथ शहद और नींबू के साथ करने से आपका वजन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये त्वचा के लिए भी लाभकारी है। त्वचा यानी
1: कि हमारे चमड़े
0: हाँ, त्वचा के लिए नींबू के लाभ अनगिनत हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें मौजूद क्लेंजिंग तत्व रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है, नई रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है। पानी और शहद का मिश्रण आपकी त्वचा के लिए एक अनूठा दृढ़ जीवाणुरोधी और कोलेजन बढ़ाने वाले गुण होते हैं। इसलिए अगर आप स्वाभाविक रूप से चमकदार त्वचा चाहते हैं तो यह पेय आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। पोषक तत्व और विटामिन से भरपूर शहद और नींबू के गर्म पानी में कई जरूरी एंटी ऑक्साइड विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी मौजूद होता है, इसलिए इसके सेवन से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, साथ ही यह वजन कम करने में सहायक होती है। रोग प्रतिरोधी क्षमता में मजबूती, शहद का सेवन शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद, इसलिए डॉक्टर हमेशा इसके सेवन की सलाह देते हैं। शहद के साथ नींबू और गुनगुने पानी के नियमित सेवन शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। शहद और नींबू में मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट्स और कई पोषक तत्व शरीर को मौसम बदलने के साथ होने वाले संक्रमण को भी दूर रखने में मदद करता है। इस प्रकार ये बहुत ही अच्छा जो मिश्रण है तीन चीज़ों का, पानी यानी गुनगुना पानी, शहद और नींबू, तो ये सब इतनी चीज़ों में मदद करता है। तो जो लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं करते आए हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उस चीज़ को शुरू कर सकते हैं इस प्रकार से अपना। तो संजय जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे इस बारे में?
1: जरूर राजेंद्र जी, पूछना तो ये है कि जरूर ये संदेश जो आपने दिए हैं ना, हमारे सभी सुनने वालों इससे जरूर कोई ना कोई और लाभ उठाए, ताकि हमें छोटा सा चीज है ना, कोई मंगा दवाई नहीं, कोई मंगा दवाई, राजेंद्र जी शांता जी का माइक ऑफ है, कोई मंगा दवाई नहीं है, और इससे कितना आसानी से और कितना चीज से हम सब अपने शरीर अपने में बदलाव ला सकते हैं ना,
2: फायदादार है,
3: क्योंकि सब चीजें घर पे मौजूद होती हैं, घर में मिल जाती हैं, बाहर से लाने की भी नहीं जरूरत।
1: तो अगर दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान देना, और राजेंद्र जी जो इस समय पैनल पे दूसरा गीत के रखने वाले हैं, पर आज का विषय जो जम्मू कश्मीर है वहाँ का राजा भी जिनका, और राजेंद्र जी कितने साल के हुए राजा वहाँ का?
0: राजा जो महाराजा करण सिंह है, राजा हरि सिंह, उनके जो पिताजी राजा हरि सिंह, उम्र 96 ईयर हो चुका है,
1: 96 ईयर,
0: और अभी भी वो अच्छे से चलते फिरते हैं, बड़े सब काम करते हैं, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए हैं जो कि अभी भी सुचारू रूप से सब अच्छे ढंग से चलते हैं, जम्मू कश्मीर में भी है, हरिद्वार में, पूरे भारतवर्ष में उनके मंदिरों
1: बनाए हैं
0: बहुत,
1: और जो जिनका, और हम अभी उसके बारे में जरूर सुनने वाले हैं। पर बबली जी मैं देख रहा हूँ आप भी कुछ कहने वाले हैं।
3: हाँ जी जरूर, एक छोटा सा संदेश है, मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया ना बिछोना होगा, साथ होगी दोस्तों की यादें और एक शमशान का कोना होगा, और वहाँ लिखा होगा मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते।
1: तो ये तो पूरा सत्य है, और हम सब उस पे जरूर इन बातों को, सुंदर सुंदर संदेशों को जरूर कार्यक्रम में रखते हैं। शांता जी कुछ आप कहने वाले थे, जम्मू कश्मीर कब जा रहे हैं आप?
2: जम्मू कश्मीर अगर बुलावा होगा तो जाऊंगी, पर जम्मू कश्मीर में वो श्रीनगर कहते हुए ना, कश्मीर के श्रीनगर, और क्षीर सागर कहाँ पे, वहाँ पे भी है
0: क्षीर सागर, भगवान विष्णु लोक में है, जहाँ पे दूध का सागर है, जैसे हमारे इस धरती इस भूमंडल में पानी का सागर है, वैसे ही विष्णु लोक जो है, विष्णु लोक में वहाँ दूध का सागर है, इसलिए क्षीर मतलब दूध, उसका सागर है, दूध का सागर है, जहाँ भगवान विष्णु अपने शेष नाग की सैया पे लेटे रहते हैं, उसको क्षीर सागर बोलते हैं।
1: और वहाँ बस शांता जी आपका कोई इरादा थोड़ो है उधर जाने का?
0: अभी तो नहीं होगा
2: अगर जाना हो तो जरूर जाऊंगी।
1: और दोस्तों हम अगले गीत की ओर जरूर बढ़ने वाले हैं, अभी जो हमारा विषय है उसके बारे में राजेंद्र जी हम सबको सुनाने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर के बारे में। पर पहले उस ओर बढ़ने से पहले इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है ना, ये रेडियो जो हम सबको ये अवसर में देते हैं, डायरेक्टर और जो हम सबको ये अवसर देते हैं, और कार्यक्रम जो यहाँ से हम लोग का ग्रुप जो है जिसमें हम सब इकट्ठा होकर के और कार्यक्रम बनाते हैं ज्योति का प्रकाश, और ज्योति का प्रकाश का लक्ष्य भी यही है कि हमारे जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा और प्रकाश आ जाए। तो यही आशा रखते हुए हम सब हर बार, और हमारे विशेषज्ञों जो भारत देश से और यहाँ हॉलैंड से भी जो हम सब के लिए टेमास खोज खोज करके रखते हैं, भाई संजय शर्मा जी जो दिल्ली पहाड़गंज से, भाई रिंकू और कालिया जी जो उत्तम नगर द्वारका से, मोहन गार्डन से हॉलैंड देश में, रत्ना जी जो दनहाक से हम सब के लिए कार्यक्रम रखते हैं और विषय खोज कर और रखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र जी गीत की ओर हम बढ़ेंगे, गीत के बाद में आज का विषय उस ओर छलांग लगा देंगे।

0: चंचल जी ने भजन गाया है, बहुत ही अच्छा भजन वो गाते हैं, गाते थे, अब तो रहे नहीं, अभी पिछले साल चले गए बेचारे, लेकिन उनके भजन अमर हैं और सब लोग उनको बड़े प्रेम से सुनते हैं आज भी। अब हम अपने विषय की ओर चलते हैं कि कश्मीर की जो 10 मेन बातें हैं पहले वो करेंगे, इसके बाद वहाँ के राजा की बात करेंगे। कश्मीर के बारे में 10 वाक्य। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग होने के अलावा यह अपनी खूबसूरत वादियाँ, जंगलों, नदियों और फलों के पैदावार के लिए मशहूर है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम ही लगती है, क्योंकि इसकी बहुत से विशेषताएं हैं जिनको इस छोटे से निबंध में बयान नहीं किया जा सकता। जो हमारा कार्यक्रम अब बच गया है, इसमें क्या हम इस कश्मीर के बारे में बोलें, क्योंकि बहुत बड़का बात रहा, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि छोटे से समय में ही बड़ी बात हो जाए तो क्या कम है।
1: बिल्कुल एकदम राजेंद्र जी, क्योंकि कश्मीर के और एक उसे कहा जाता है दुनिया का स्वर्ग, ऐसा हाँ, कितने लोग भी कहते हैं।
0: परंतु आइए जानते हैं कश्मीर के बारे में जो 10 प्रकार की लोग बात करते हैं। नंबर एक बात है कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं, जैसे कि संजय जी आप कह ही रहे हैं धरती का स्वर्ग है, यह राज्य भारत का अभिन्न अंग है। और नंबर तीन बात जो है, कश्मीर का भूभाग सबसे बड़ा है। चौथी बात इसमें आती है कि कश्मीर को भारत का मुकुट भी कहते हैं। इसके इतिहास बेहद प्राचीन हैं, कश्मीर का इतिहास सबसे पुराना है। मुगल शासक जहांगीर ने कश्मीर को परियों का देश से संबोधित किया था। और नंबर जो सात बात है, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। गुलमर्ग को सुंदर और सुगंधित पुष्प इसकी सुंदरता बढ़ा देते हैं। जो गुलमर्ग एक जगह है वहाँ पे पुष्प बड़े सुंदर हैं और सुगंधित पुष्प है, खुशबूदार पुष्प है, फूल यानी पुष्प यानी फूल। यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में ही है। डल झील देश और विदेश के नागरिकों को आकर्षित करती है। डल झील है जो, उसमें विदेशी नागरिक बहुत से आते हैं, उसको सब लोग देखते हैं। कश्मीर भारत का सबसे एक और बेहतरीन राज्य है। यह उत्तर भारत में झेलम नदी की घाटी पर स्थित है। कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग तो कहते हैं, लेकिन लोग इस स्वर्ग को देखने से देश विदेश सब जगह से आते हैं। ये सभी मौसम में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसमें गर्मी हो, सर्दी हो, बर्फ़ पड़ी हो या कैसे भी मौसम हो, सब में अच्छा दिखता है। गर्मियों में कश्मीर में हरियाली देखने को मिलती है, गर्मियों में भी हरा रहता है, और सर्दियों में यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखती है। यहाँ पर जब जो सेब है उसकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, और पूरे देश में तो भारत में तो जाता ही, विदेशों में भी इसका सेब जाता है कश्मीर से है। और मैंने देखा है कि कश्मीर में जो जंगल है, जंगल में भी सेब होते हैं।
2: लेकिन कश्मीर के शॉल भी बहुत मशहूर हैं, पश्मीना शॉल।
0: हाँ, उन जंगलों में पश्मीना शॉल के, पश्मीना जो बनता है, पश्मीना एक रिंग होती है जो उसके बीच से पूरा शॉल निकल जाए तो
2: हाँ जी, हाँ जी।
0: और कश्मीर में घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है, बहुत लोग इसमें घूमने के लिए आते हैं और घूमने लायक जगह है।
1: राजेंद्र जी, मैंने नहीं समझा, मैं इस बात को नहीं समझा, क्योंकि आपने दिखाया कि उंगली में जैसे कि कुछ क्या उसके बारे में कुछ।
0: हाँ, उंगली में जो दिखाया रिंग नहीं होती जो उंगली में,
1: हाँ हाँ जी,
0: अंगूठी,
1: हाँ जी,
0: उस रिंग से जो सॉल है,
1: यानी कि रस्सी निकाल सकता उतना पातर,
0: जो सॉल है
1: हाँ
0: कश्मीर का,
1: हाँ जी,
0: वो उस रिंग से निकल सकता है, यानी इतना पतला और इतना
1: पातल रस्सी। हाँ,
2: क्योंकि कश्मीर के सॉल बहुत मशहूर है, प्रसिद्ध है।
1: ऐसा बात है।
0: पश्मीना जो कश्मीर का पश्मीना है,
1: पश्मीना
0: वो पश्मीना ही निकल सकता है,
2: शॉल का नाम है पश्मीना।
0: और गुलमर्ग की खूबसूरती के कारण इसे कश्मीर की जान भी कहा जाता है। गुलमर्ग जो एक जगह है उसकी खूबसूरती बहुत है। कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल होने के साथ साथ यह सर्दियों से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इसको कुछ विशेषताएं और खूबसूरती का कारण बहुत प्रसिद्ध कर जाती है। कुछ कारण हैं इसे प्रसिद्ध जो बनाते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे केसर, केसर यहाँ का बड़ा फेमस है, सिकारा, मौसम यहाँ का बड़ा अच्छा, सेब और सूखे मेवे, सूखे मेवे में जैसे बादाम है, अखरोट है, और
1: मेवा कहते हैं ड्राई फ्रूट ना,
0: ड्राई फ्रूट्स, हाँ बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो कश्मीर में होते हैं। और यहाँ का गुंडोला, गुलमर्ग में गुंडोला होता है, और इस प्रकार से कश्मीर और भी खूबसूरत इन चीज़ों से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि कश्मीर में कौन सा फल प्रसिद्ध है, जो यहाँ का फल है वो दुनिया में कौन सा प्रसिद्ध है। तो यहाँ के सेब दुनिया भर के मशहूर हैं, यह अपनी सेब,
1: सेब फल कहते हैं वो एप्पल,
0: एप्पल।
1: पर राजेंद्र जी, हॉलैंड में तो रंग बिरंगी, कभी एल स्टार तो कभी गोल्ड स्टार की क्या क्या नाम है शांता, ढेर सारे ना।
0: जो तो वहाँ का, जो वहाँ का है सेब, वो हर प्रकार का सेब वहाँ रहता है,
1: वो सब प्रकार,
0: सब प्रकार का। यहाँ के सेब दुनिया भर में मशहूर हैं, यह अपने फल उत्पादन, सेब जो है यहाँ का सबसे प्रसिद्ध फल है। यह राज्य भारत में स्ट्रॉबेरी उत्पादन के रूप में भी उभर रहा है, स्ट्रॉबेरी में भी यहाँ आगे हो रहा राज्य बहुत ज़्यादा। अत्यधिक मांग के और उत्पादन के कारण युवा अपनी लाभदायक आजीविका के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती में उद्यम कर सकते हैं, यानी स्ट्रॉबेरी की खेती में अभी लोग इस तरफ जा रहे हैं। सेब तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन स्ट्रॉबेरी में काम चल रहा है।
1: स्ट्रॉबेरी बोले तो
0: स्ट्रॉबेरी,
1: ओके, ऐसा
0: वो लाल लाल जो,
1: हाँ जी,
0: यहाँ तो बहुत मिलती है,
1: यहाँ तो बहुत मिल जाता है।
0: तो कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पर?
2: डोगरी,
0: हाँ, अधिकतर कश्मीरी डोगरी बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद उर्दू और अंग्रेजी के अलावा कश्मीरी डोगरी और हिंदी आधिकारिक भाषाएं होंगी। आगे जो भाषाएं होंगी यहाँ पे हिंदी होगी, अंग्रेजी भी थोड़ा बहुत बोली जाएगी, और डोगरी तो है ही है, लेकिन कश्मीरी भाषा में पुरानी जो उर्दू बोलते हैं लोग वो भी थोड़ा सा रहेगी। अब प्रश्न है कि कश्मीर में लड़की को क्या कहते हैं?
1: लड़की को
0: सभी राज्यों ने अपनी भाषा है, सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषा है, और किसी वस्तु विशेष को स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे कश्मीरियों में एक लड़की को कूर कहा जाता है,
1: ऐसा
0: जी। इस प्रकार से कश्मीर का जो इतिहास है अलग अलग प्रकारों से है। कश्मीर की बात करें तो क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़े, और फिर हम लोग कश्मीर की बातें आगे भी करते रहेंगे।
1: जरूर राजेंद्र जी,
0: कश्मीर जम्मू में ही वैष्णो माता जी का मंदिर है, और वहाँ के जो भजन है बड़े प्रसिद्ध हैं, तो उसी को क्यों ना चला दिया जाए।

0: तो काफी नजदीक हो गया, लेकिन लागी छूटे ना अब तो सनम। एक हमारा जो गाना है वो बड़े ही फेमस है, वो जैसे ही इस गाने की तरफ हम बढ़ते हैं सबको पता चल जाता है कि ये लोगों का समय जो 2 घंटा है वो पूरा हो चुका है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो हमें इस बात से पता चल जाता है कि कार्यक्रम अपने समाप्ति के सीमा पे आकर पहुंच चुके हैं।
0: तो चला देते हैं लागी,
1: चला देते हैं राजेंद्र जी।

उनको हीरे मिल गए जिनको हीरों की चाहत थी, और वो खुद हीरे बन गए जिनको गोविंद की चाहत थी। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।

फूलों की तरह महकते रहो और सितारों की तरह चमकते रहो। आपके साथ दी आपको हम दिल से धन्यवाद कहती हूँ। साथ देने और सुनने के लिए आपको धन्यवाद। सेविका शांता की प्यार भरे राम राम प्रणाम।

चाहे जाए जिया तेरी कसम लागी छूटे ना। तो इसी प्रकार हम भी रेडियो से कभी छूटेंगे नहीं, चाहे तो कुछ भी हो जाए, चाहे जिया जाए या रहे, लेकिन रेडियो के साथ हम हर समय बने रहेंगे। हर बार की भांति अगली बार भी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी श्रोताओं को जो हमारे इतना प्रोग्राम साथ देते हैं सुनने के लिए और बड़े प्रेम से सुनते हैं, तब तक के लिए सबको नमस्कार।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज का कार्यक्रम में हमारे सहयोगी साथी और जाकर के समता खेमाई जी, बबली आसरा जी, राजेंद्र सिंह जी, अब मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा जरूर ये रखता हूँ कि कुछ ना कुछ संदेश आप तक पहुँचा होंगे। हम ये बस यही कहना चाहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक सच्चे अच्छे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। बस यही जिंदगी है। नमस्कार दोस्तों।

0: Fahom Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2019.

Dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum dir tana और हमारे यारो लगा चुनरी में और चुनरी में दाग कब लगते हैं आपको तो पता होना चाहिए और दिल ही तो है। राज कपूर मना दे और इसमें मना दे का फिल्म का नाम है दिल है तो है। निखत द्रिय सस्ता का ये फिल्म है। तो दोस्तों हम और आगे को चलते हैं और मना दे के बांध पे हम चलते हैं किशोर दादा के ओर और कहते हैं ना पूछ दिल के हकीकत मगर ये कहता है, ना पूछ दिल के हकीकत मगर ये कहता है, वो भी बेकरार रहे जिसने बेकरार किया है। तो हम चलते हैं, मूवी का नाम है अंदाज 1971 का ये फिल्म है जिसमें माला सिन्हा राजेश खन्ना ने काम किया है और किशोर दादा का ये सॉन्ग है।

और जिंदगी एक सफर है, और जिंदगी एक सफर क्यों होता है दोस्तों, जब सुहाना होता है। मूवी का नाम है अंदाज 1971 का ये, और ये फिल्म है। तो हम और आगे को चलते हैं हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। तो और क्या है, जैसे कहा है किशोर के बाद में हम चलते हैं और परमाश्री मनाडे की ओर, की कहते हैं इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, इस दिल के दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, बड़ी मुश्किल से इसे खुश नसीब होती है, किसी के पास आने पर खुशी हो न हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है। तो हम जाते हैं कि अगर हमारे गीतों में हमारे टूटिया हो तो हमें क्षमा करना दोस्तों, लेकिन हम चाहते हैं प्यार करने वाले को लिए कि जोहरा क्या कहते हैं।

0: खान साहब या तुम भी तकल्लुफ करने लगे, बड़े अफसोस की बात।
1: खाना वाना तो होता ही रहेगा, महफिल कब गर्म होगा?
2: महफिल भी जमेगी तो जल्दी रख।
0: दादाजी आज तो आपको गाना सुनाना पड़ेगा।
2: यार अब बुढ़े हो गए, गाना वाना पुरानी बात।
1: तुम तो बुढ़ा हो गया, हम तो नहीं हुआ। सुनाओ बात करो। ओ भाभी जाने।
3: जी भैया।
1: हो तुम्हारा शोहर बुढ़ा हो गया था, हम इसको जवान करता है।
0: अच्छा लक्ष्मी सामने है तो मैं जवानों का जवान। लो सुनो।

और मेरी जोहरा जबी फिल्म वक्त का ये गीत है। तो कहते हैं अब जिसके ये मैं आई वो ही पाई रोशनी, अब जिसके ये मैं आई वो ही पाई रोशनी, हमने तो दिल जला कर सारे आम रख दिया है। तो हम चलते हैं रात कली में क्या आते हैं दोस्तों, जो सपने आते हैं तो क्या आते हैं, रात कली में किशोर दादा ने आते हैं।

0: रात कली और ख्वाब आई, उसके बाद हम चलते है मनदई की ओर।
1: करा लो, अरे घर की खेती

और मुस्लिम को तस्लीम अर्ज है और हमारे हिंदू को प्रणाम। दोस्तों कितनी खूबी सी हमारी और यानी परमा श्री मन्ना देवी ने और इस गीत को आपको सुनाई है यारो। उसके बाद हम चलते हैं किशोर दादा की ओर। अब जिसके ये मैं आई वही पाई रोशनी, अब जिसके लिए मैं आई वही पाई रोशनी, हमने तो दिल जला कर ए आम रख दिया है। तो किशोर जी क्या कहते हैं?

ये मुश्किल सी ये दिल मेरा दिल नहीं ठड़प की। और किशोर दाना ने इस गीत को सुनाए हैं तो कहते हैं बड़ी मुश्किल से इसी खुशी नसीब होती है, बड़ी मुश्किल से इसे खुशी नसीब होती है। किसी के पास आने पर खुशी हो न हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है। तो हम चलते हैं अगला जोंग की ओर। हमारी दोस्तों लता जी, नैत की लता जी और परमा श्री दादा हेमंत दादा मन्ना दे का ये सॉन्ग आपको सुनना चाहिए।

और दोस्तों आपको पता चले और मनाडे के बाद हम चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर आगे। कहते हैं अब जिसके ये मैं आई वही पाई रोशनी, जिसके लिए मैं आई वही पाई रोशनी, हमने तो दिल जला कर सारे आम रख दिया है। तो हम चलते हैं किशोर दादा के ओर, एक प्यार भरी सॉन्ग आपको हम यहाँ से सुनाते हैं।

और दोस्तों इसके बाद हम जाते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर आगे, और यहाँ पे मनाली क्या कहते हैं।

मैं अपनी आवाज वाले को पास तुम्हारे खोए हुए स्वर्ग में वापस मिली। हाय आज देवी माँ से कुछ और भी मांगती थी। गाओ गोपाल गाओ, इस नौजीवन की बस।

और तू हमारे दिलवा तोर के न चाहिए मॉरिशियस लोकल सॉन्ग आज के हम सुनाएंगे। सनी जुमन आपको क्या सुनाते हैं?

और गुलाबी आंखें, ये तो बॉलीवुड सॉन्ग है, लेकिन भोजपुरी में लोग मॉरिशस में कैसे गाते हैं हमारे यारो? तो हम चलते हैं जोना टॉप टॉप ऑफ फन मॉरिशस, और भोजपुरी सॉन्ग है, आओ सुना जाए।

0: नहीं पिया पिगोना, हम तोरा नहीं पिया सीतोना, हम तोरा ऐसे हिला के पिया देबो आगासीना।
1: हिलाते रहिए हिलाते रहिए, निमन से हिलावेले हौ बुसों सहित हिलावत हुए फाट जाए तो तोर मुंह भीन जाए।
0: जब ले तू नहीं पीबे तम हिलाते रहा, हमार नाम सोना तो नाम बसात, हम अपन सोना के ताकत से तोरा सात बार खरीदब, सात बार खरीदब, सात बार तोरा जी से खरीद के हम अपन बस में ले लेव, सोना के ताकत से तोरा अपन मुट्ठी में रखब।
1: हम तो तोर भगवान है, तोर जिंदगी हमार बात, तोर जिंदगी
0: दोनों के मुलाकात, दोनों के मुलाकात आज होलबा, देखब सा तू बड़ा कि हम बड़ा।
1: आज चाहे आज देखे के सुनवा केकर में कितना खून बार कितना पानी,
0: देखब सा बादर बड़ा कि बिजली बड़ा।

और चादर ओढ़ के या लंगोटी, बोले लंगोटी झार के जा या छाता ओढ़ के जा दोस्तों, लेकिन हंगामा ही हंगामा प्रोग्राम। हम आपको भोजपुरी बॉयस के जाते हैं कि मीठा मीठा हो जाए।

बदिया ले ले हमारी जान। हम जाते हैं गौरी ब्रदर्स के ओर, तो गौरी ब्रदर बोले करम झारो रे दमदवा, करम झाड़ो रे दमदवा। क्या कहते हैं, सॉन्ग्स फ्रॉम मॉरिशियस।

और दमदवा क्या क्या मांगते भैया, तो सास देवे है गाड़ी, तो ससुर देवे है टैक्सी, तो ये सब भोजपुरी सॉन्ग में आपको मिलते हैं क्या? आए रे सुनवा क्या कहते हैं, आए रे सुनवा।

0: और दोस्तों एरिज़ोना और जोना है हमारे यारो एन भाई खान आर्द आंदर निमर हमारा बुढ़िया नाचे है
1: एगो नचनिया रोज रोज ऐसे

भैया के घर वाली यानी ये बुढ़िया बोलते हैं, बोले रोज रोज रकम रकम नाच दिखावे है, तो खाली एक ना नचावे भैया तो ठीक है, बाहर नाचे कोई बात ना है। तो गौरी ब्रदर्स का ये सॉन्ग आप लोग को हमने सुना दिया है हमारे यारों। उसके बाद हम चलते ही एक और सुना जाए, निशा निशा के बातचीत हो रहा है और भोजपुरी वॉइस क्या सुनाती है।

दूर, हाय मेरे जाने मन, हाय मेरे दिल रुबा, हाय मेरे मुनमुन की कौन ची बोले दोस्तों, लेकिन बहुत प्यारा सॉन्ग है।

इतिहास कहते हैं, इतिहास कहता है कल सुख था, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, इतिहास कहता है, इतिहास यानी कि कल जो बीत गया, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है, अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज, ऐ मेरे दोस्त, तो हर रोज सुख हो।

गोलकेस गोलाई के आवाज़ में यहाँ से हमने सुने हैं। मेरे प्यारे सुनने वालों, कुछ अलहदा आपके लिए यहाँ से पेश किया जाता है आज के तारीख में। ओ सुदामा जी ने कृष्ण श्री कृष्ण जी से कहा, सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि दोस्ती का असली मतलब क्या है, दोस्ती का असली मतलब क्या है। तो कृष्ण जी ने हंसकर कहा, हाँ कृष्ण जी के हंसकर कहा, कितनी मुस्कान है भी कृष्ण जी के ना। तो कृष्ण जी ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है ना ए दोस्त, वहाँ दोस्ती कहाँ होती है।

सुहानी चांदनी रात, राम नारायण शिवराम जी के आवाज में आपके लिए पेश किया जाता है मेरे दोस्त फावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। आपको हम बता दे और क्या बताना चाहती हूँ तो वो ये है, जरूरत से ज्यादा मिले तो उसको कहते हैं नसीब, जरूरत से ज्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोता है, सब कुछ है फिर भी रोता है, उसको कहते हैं बदनसीब। और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है, जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है जो, उसको कहते हैं खुश नसीब। यानी कि नसीब बदनसीब और खुश नसीब। तो आप इसमें से कौन वाला हो कि बदनसीब हो, खुश नसीब हो या नसीब वाला हो।

यादगार ऑर्केस्ट्रा के साज और संगीत में राम नारायण शिवराम जी के आवास में यहाँ से हमने श्रवण की है। श्री कृष्ण जी के वाणी, श्री कृष्ण जी की वाणी वो ये है कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। आज आप जो कर रहे हैं ना, आज आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा। और आज जो आपका भाग्य है, आज जो आपका भाग्य है वो आपके पिछले किए गए कर्मों का फल है।

0: बहुत खूब मुकेश चोलाई जी की आवाज़ में हमने श्रवण की है माई तेरी चुनरिया। हम जब सफल होते हैं, तो तालियां गूंजती है। हम जब सफल होते हैं तो तालियां गूंजती है, चमकते हैं चेहरे और कैमरे मुस्कुराहटें कैद करते हैं। मगर उसी भीड़ के पीछे एक इंसान खड़ा होता है ना फोटो में आता है, ना मंच पर बुलाया जाता है। बस आंखों में नमी और होंठों में एक ही शब्द मेरा बेटा, मेरा बेटा। उसने नहीं मांगी पहचान, ना ही चाहा सम्मान। उसकी सबसे बड़ी जीत, हमारा एक छोटा सा मुकाम। वो दिन में पसीना बहाता है और रात में ख्वाब बुनता है। हमें ऊंचाई पर देखने की हर रोज एक नई कोशिश करता है। तो वो हमें थाम लेता था लेकिन खुद कभी थमता नहीं, क्योंकि उसके सामने में हम होते थे। वो पिता है, ना कुछ कहता है ना जताता है। मगर उसकी चुप्पी में पूरे ब्रह्मांड जितना प्यार समाया होता है।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

रेनी राम नारायणी और मुकेश चोलाई के आवाज में चंदन सा बदन फिल्म सरस्वती चंद्रा में ये गीत गाया गया है मुकेश जी के आवाज में। कहते हैं कि जिसका जैसा चरित्र होता है, जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों से, शुद्धता होती है विचारों से, आदमी तब पवित्र होता है।

जीना यहाँ मरना यहाँ, फिल्म मेरा नाम जोकर से निकाल दिया गया है राम नारायण सियोराम के आवाज में। प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है? सभी मनुष्य और प्रकृति के सभी प्राणी जीव मात्र के प्रति करुणामय होना, वही प्रेम का वास्तविक अर्थ होता है।

हाँ अवश्य, ये सवाल तो उठता है कि कैसा तेरा संसार, छोटा बड़ा अपना पराया, छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबका हो।

वाकई में जिंदगी ख्वाब है। हमको सुना दी एक बार फिर राम नारायण शिवराम यादगार ऑर्केस्ट्रा के साथ, जैसा जैसी मोहब्बत तुम अपने माँ बाप से करोगे वैसा ही मोहब्बत तुम्हारे औलाद तुमसे करेगी, यही लेन है यही देन है, यही स्वर्ग है यही नरक है, बस समझ समझ का फर्क है।

घोषाल और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, इश्क छुपता नहीं छुपाने से। फ्रॉम द मूवी बेवफा से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, और आपको सुनाने वाले हैं अभिजीत।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी बेवफा से हमने पेश किए हैं इश्क छुपता नहीं छुपाने से। एक और गीत हम पेश करेंगे फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा, इसी फिल्म से आप सुनेंगे मैंने सोच लिया।

अभी आप सुन रहे थे मैंने सोच लिया फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते हम प्यार है तुम्हारे फ्रॉम द मूवी। हाँ मैंने भी प्यार किया है कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

बार शानू के साथ में अलका यज्ञिक आपको सुनाने वाले थे हम यार है तुम्हारे फ्रॉम द मूवी हाँ मैंने भी प्यार किया है। वो लड़की बहुत याद आती है फ्रॉम द मूवी कयामत से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं और आपको सुनाने वाले हैं कुमार शानू के साथ में अलका याज्ञिक।

वो लड़की बहुत याद आती है। अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। भीड़ में तन्हाई में फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा से आप सुनेंगे

अभी आप सुन रहे थे भीड़ में तन्हाई में फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आपके प्यार में हम सवरने लगे। अब का यज्ञिक आपको सुनाने वाले हैं।

के प्यार में हम सवरने लगे अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। दिल मेरा तोड़ दिया उसने पूरा क्यों मानू फ्रॉम द मूवी कसूर से हम पेश करते हैं।

0: हाय मैं सिमरन बोल रही हूँ, अपना नाम और मैसेज एक बीप के बाद छोड़िए, मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगी। थैंक यू।
1: हेलो सिमरन, सिमरन मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो। सिमरन प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज सिमरन प्लीज पिक अप द फोन। सिमरन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो।

का यज्ञ की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी कसूर से हमने पेश किए हैं दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मानो। क्रिमिनल है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। इस बार हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवीज, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते गली में आज जान निकला। अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे एक बैठक गाना मैशअप द टाइगर्स, यानी इस ग्रुप का नाम है द टाइगर्स। हरीश सुखदेव आपको सुनाने वाले हैं एक और मैशअप। चलिए मिलकर सुनते हैं।

हरीश सुखदेव जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे एक मैशअप सुनने वालों। सोनिया सिंह आ रहे हैं प्रोग्राम में गिलबा का ग्याल।

सोनिया सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे गिल्बा का ख्याल। लीला एम आ रहे हैं प्रोग्राम में सुनने वालों, और लीला एम जी आपको क्या सुनाने वाले हैं, अब चोलिया भीजे।

अभी आप सुन रहे थे अब चोलिया भीजे पसीन बनवारी, लीला एम आपको सुनाने वाले थे। मलेसा सिरपौल आ रहे हैं प्रोग्राम में साइड चेक।

0: What's this mark?
1: Where is what?
0: What's this here, so? Oh. Explain, Mark. Let me hear.
1: I can tell you the truth. You sitting? I had emergency.
2: अभी आप सुन रहे थे मलेसा शिपोह की आवाज में साइड चेक रसिका दीनदयाल आ रहे हैं प्रोग्राम में बोले बोले हिरनवा

बोले बोले हिरनवा हमको न मार, हमको न मारो जंगलवा में, रसिका दीनदयाल आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं। सुनने वालों, पृथ्वी आ रहे हैं प्रोग्राम में, श्याम सुंदर।

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर पृथ्वी की आवाज़ में केनेथ सालिक को सुनाने वाले हैं राधिका वायुली वेंगो।

अभी आप सुन रहे थे उमर जी की आवाज़ में मेरा साया साथ होगा। उमर और निसाम जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम में आ रहे हैं नदीम खान जी और नदीम खान आपको सुनाने वाले हैं जिंदगी चार दिन की ना रोठो सनम।

जिंदगी चार दिन की, ना रूठो सनम, फिर मिले या ना मिले। अभी आप सुन रहे थे नदीम खान जी की आवाज़ में। सुनने वालों, एक नया गीत जो हाल ही में अंदर आया है और आपको सुनाने वाले हैं जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन। ये दोनों बाप बेटी है और इतनी मधुर भरी आवाज़ में इन दोनों ने ये गीत को गाए हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं। तुम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए।

मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए। अभी आप सुन रहे थे जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन जी आपको सुनाने वाले थे इस विनोद लक्ष्मण प्रोडक्शन अगेन। मैं नदिया की धारा वादिका राम सुकुल और स्टीफन बैताली आपको सुनाने वाले हैं।

स्टीफन बैताली और वादिका रामसुकुल आपको सुनाने वाले थे मैं नदिया की धारा बाहें तेरी किनारा। धीरज लाला राम जी प्रोग्राम में आ रहे हैं वादिका रामसुकुल के साथ में मेरे सनम तेरा खत मिला।

मेरे सनम तेरा खत मिला भी आप सुन रहे थे धीरज लालाराम और वादिका रामसुकुल जी की आवाज़ में। रायन मनोरथ आ रहे हैं प्रोग्राम में, मैं प्यार का दीवाना।

रायन मनोरथ जी से आप अभी सुन रहे थे। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे, तुमसे एक मैशो भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। दविंदर सिंह शिवनाथ और सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं, दो साथी जीवन के।

अभी आप सुन रहे थे दो साथी जीवन के, दविंदर सिंह सिवनाथ के साथ में सविता सिंह आपको सुनाने वाले थे। इंद्रनील रॉय और प्रशांत रामचेतन आ रहे हैं प्रोग्राम में एक मैदली के साथ।

इंद्र नील रॉय और प्रशांत रामचंद्रन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये मैथिली सॉन्ग। जब जब बाहर आए अब तो है तुमसे, यानी एक मैथिली आप सुनेंगे काश बी की आवाज़ में।

आकाश बी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे ये मैथिली सॉन्ग। रायन मनोरथ और जॉयस शिव प्रसाद प्रोग्राम में आ रहे हैं आपके आ जाने से।

जय शिव प्रसाद और रायन मनोरथ की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। उमर वाहिद हुसैन आ रहे हैं प्रोग्राम में। घटा छा गई है

सुका गया ना बाबू तेरी गजराज। यस संगीत की कलाकार ना

हमारे चार के नंबर कोई भी कार्य के लिए 0 70 62 20 77 0 70 63 62 77 रेडियो के माध्यम से कुछ काम करवाना है

Ja toch? यही है मोती माला भोला सिंह, मोती माला भोला सिंह।

और आप एक हिट स्टेशन पाहुन हिंदुस्तान रेडियो के माध्यम से जबकि हमारे कार्यक्रम 07 362 67 20 67 20 67 20

0: गाओ नाचो झूमो खुशियां मनाओ आपस में प्यार में मिलकर, लेकिन अपनी संस्कृति सभ्यता भाषा धर्म मत भूलो, प्रचार करते चलो, समझा रहे बतला रहे आपको कौन इस देश में।
1: सरनामी है हमारा शान, बोलो सरनामी है बड़ा महान।
0: और कौन ये कह रहा है, दबीन बलदेव सिंह।

हॉलैंड में रहते हो ना, मत भूलिए अपना संस्कृति, अपना भाषा, अपनी सभ्यता, यही आपकी डेटी तय थे। कौन हो आप?

0: और आप ही के नाम में ये चल रहा है साथियों, हमारी दोस्तों। और इस बार नंबर जो हम आपके लिए चलाएंगे, क्योंकि नंबरे जो चला रहे हैं संगीत और आपके नाम से ये चल रहा है ना, ये कार्यक्रम जो है 24 घंटे लगातार आप इसे सुन सकते हो। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना है, मैं जो आपको दे रहा हूँ आपको कुछ बताना है तो अवश्य तार का नंबर जानना चाहिए। जेकर वेट एंड असुदत है दान खादत मकलक खबर एंड खान बेस्त। और सुनने वालों तो यूँ ही नूर सोफन तक दिली 62 20 77 inbellen, hè, daar bent u.
1: Jaate hai kaha, dunia se jaane wale.
0: Ja, daar bent u, daar toe in de gelegenheid hoor.

ये मधुर संगीत आवाज क्या कहना है, कलाकार जो है ना

मानो या न मानो आपके और जो है आपके विचार हो सकता है, लेकिन इनकी कंठ जो है सरस्वती मैया विराजमान अवश्य कर रही है। वो पल कभी भुलाया नहीं जाते हमारे साथियों, हमारे दोस्तों, हमारे मित्रों, या वो पल कभी भुलाया नहीं जाते जिनमें वक्त कम और लम्हे ज्यादा होते हैं ना। आपकी क्या इरादा है

इसीलिए कह दूं कहीं दम जो है, तुम क्या हो कैसे हो ये बातें फिजूल है, तुम जो हो जैसे हो मुझे ये कबूल है।

वाह वाह, ये प्रोग्राम में सुने आप, चांद को मिल गया चांदनी तो सितारों का क्या होगा, मोहब्बत एक से कर ली तो बाकी हजारों का क्या होगा। दोस्तों, और इसी दरमियान, इसी वास्ते

बतलाता। चलो इस नगमा, इस भजन जो भी आप कहे, आप जो सुने, तो इस वक्त जो मैं कहूं आपसे, नाराजगी में कुछ नहीं रखा, मोहब्बत से जीना सीखो। ये जो दुनिया है ना, हाँ, ये जो दुनिया है, ना मेरा ठिकाना है ना तेरा, और जो है कह दूं,

तो हमारी साथियों, जब जिंदगी समझ आई तो जिंदगी से दूर थे हम, मरना चाहते थे पर जीने को मजबूर थे हम, हर सजा कबूल की हमने, सर झुकाकर कसूर इतना था कि हाँ कि बेकसूर थी हम। यही आपसे बतला दूं जरा से आज ये इस कार्यक्रम में हमारे साथ क्यों, और जबकि कुछ गीत गजलें और नगमे हम आपके लिए चला रहे हैं ना, तो यही आज के कार्यक्रम में सोच रहा हूँ कि गजल चलाऊं, चाहेंगे आप सुनना चाहेंगे, और यही सोच रहा हूँ कि पसंद आएगा आपको, आया तो बतला देना, नहीं आया तो वो भी बतला सकते हो, क्योंकि तार का नंबर खुला है, ओपन है, लाइन ओपन है हमारे साथियों, और सुई फतक हमारे तार का नंबर है, फाहुन रेडियो के कार्यक्रम जो आप श्रवण कर रहे हो।

और ये कारण, जबकि ये गजल हम आपके लिए प्रस्तुत किया, हम नहीं, हमता नहीं, मैं हमारी साथियों, हर वक्त मिलती रहती है मुझे अनजानी सी सजा, मैं तकदीर से, हाँ, मैं तकदीर किस्मत से कैसे पूछूं मेरा कसूर जो है क्या है। लेकिन ये आप ही के गुजारिश पर हमेशा तो नहीं प्रस्तुत करता हूं, लेकिन आज इस एन अर्थ सॉन्ग रिंग

हाँ तो आप ही के गुजारिश पर और मैंने सुना दिया, आप यही मैं सोचता हूँ ध्यान पूर्वक आप श्रवण किए होंगे, गौर से सुनेंगे। मेरे दिल को अब किसी से गिला नहीं ना, दिल से जिसे भी चाहा वो मुझे मिला ही नहीं। बदनसीबी कहूँ या वक्त की बेवफाई, अंधेरे में एक दीपक मिला पर वो भी यकीन मानो वो भी जला ही नहीं।

0: एंड जेंटलमैन, आज हमारे बीच मिस्टर एंड मिसेस पेस्टन जी अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। लेट्स गिव देम अ बिग हैंड।
1: और आप क्या बना रहे हो आज का दिन, इस घड़ी, इस पल?

करने में जो खुश हुए वो अपने नहीं थे। हाँ हाँ, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, और जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। यूं ही किसे मैं जाकर ये बतलाऊं,

नसीब के खेल भी अजीब होते हैं ना। सच्चे दिल वालों को आंसू ही नसीब होते हैं। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, जुदा होना, कोई नहीं ना। अक्सर छूट जाते हैं जो करीब होते हैं, हमारी साथियों, हमारी दोस्तों।

ख्वाहिश तो हमेशा यही होता है, ख्वाहिश कौन नहीं चाहता है सुखी चैन और खुशी हमारे दोस्तों हमारे साथियों। इसलिए अर्थ है निकल आता है आंसू जब मुलाकात नहीं होती है ना, टूट जाता है दिल जब बात नहीं होती। तेरी जान की कसम मेरी जान, हाँ तेरी जान की कसम मेरी जान, तू याद ना आए ऐसी कोई रात नहीं होती है। और प्रोग्राम सुधे आप फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की ना

गीता राय जी और आशा जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और गीत हमने निकाले हैं निकली फेहे फेफ तक से ओपन एयर के साज पर और पेश किए ये शानदार गीत। आपको एक बात बता दूं, शायद आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लेकिन फिर बता देते हैं। उस समय मैं 7 साल का था, जिंदगी में पहली बार ये फिल्म हमने देखे हैं थिएटर में। वैसे तो रे करे 80 साल में देखे हैं, लेकिन थिएटर में पहली बार गए हैं थिएटर लुक्सोर में गए ये फिल्म को देखने। बहुत अच्छा लगा था थिएटर में बैठ के, एक कुर्सी पर अच्छा लगा था, वैसे तो बांगी पर बैठ कर देखते थे। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

0: माइति मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म सुनहरा संसार में से निकाले हैं नेकदी फैफिन सैफिन तक नौशाद अली के साज पर।
1: बरसे ना बरसे
0: ओ लता जी।

लता जी और मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं फिल्म सुनहरा संसार में से निकाल कर 1975 का ये गीत नौशाद अली के साज पर हमने चलाए हैं। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, शाम का वक्त है तो लीजिए इस तरह से।

देखती हूँ जिधर आशा जी। जी हाँ, आशा जी फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं निगेटिन ट्विन शस्त्र और ओपेन नैयर के साथ पर हमने चलाए हैं। चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं, जब आप भी हैं और मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है।

कारण कैसे हो मुकेश जी और लता जी मिलके आपको सुनाए मदन मोहन के साज पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, वो है क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुना हो, महेंद्र कपूर जी, फिल्म का नाम है सम्राट, संगीत सम्राट तानसेन। जी हाँ, फिल्म का नाम है संगीत सम्राट तानसेन, फिल्म का नाम है निगेतिन तुई शस्त्र से हम निकाले हैं। इस तरह से हम आपको सुनाते हैं।

ये दुनिया है मेरी, महेंद्र कपूर जी और लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। और फिल्म लिखती तू ऐसे कहा देखते हैं संगीत सम्राट तानसेन के साज फिल्म संगीत सम्राट तानसेन में से निकाल कर हमने पेश किए कल्याण जी आनंद जी के साज पर ये गीत था। चलिए अगला गीत है हम चलाने वाले हैं आपके लिए, बस आप ही हैं मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल अगर ये आपको ये सुनाऊँ इस तरह से। अच्छा जी और रफी

इजाज़त हो तो सुना दूँ। ये गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, आशा जी और रफ़ी जी ने आपको मिल के सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं द मैन विद द गोल्डन वॉइस, द मैन विद द गोल्डन वॉइस क्या ख्याल है।

एवरग्रीन, जी नहीं एवरग्रीन नहीं, लेकिन द मैन विद द गोल्डन वॉइस, तलत साहब ने आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। जब आप भी हैं मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है, ये गीत तो आप बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में फिर भी मैं चला रहा हूँ फिलिप अनुपमा में से निकाल कर नेक तीन सेशन सेस्तक और हेमंत कुमार के साज है लता जी है।

0: गाओ।
1: चलो मुंह हाथ धो लो, याद नहीं दावत पे जाने।
0: अभी तो बहुत वक्त है, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है

धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार। फिल्म अनुपमा में से निकाले हेमंत कुमार के साथ पर लता जी ने पेश की। और निगेटिव सेशन सेस्ट का ये फिल्म 1966 का ये फिल्म है। चलिए जा आप भी हैं मैं भी हूँ तो आपको हम क्या सुनाते हैं। ये गीत हमने चुन की है लेकिन हमने सुना नहीं, किशोर कुमार जी आपको सुना रहा है। फिल्म है देखते हैं संसार में से निकालते हैं चित्रगुप्त के साज पर। क्या ख्याल है एवरग्रीन किशोर कुमार?

हाथों में किताब, बालों में गुलाब, जबरदस्ती की प्यार, हम आपको सुनाए हैं ये चटपटा चुटकुला गीत, एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं ओवर फोन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर ये आपको किसी से प्यार है और आप उनके आँखों की तारीफ करना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि उनके आँखों की तारीफ कैसे किया जाए, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, रफ़ी साहब सुनाता है आपको इस तरह से। मदन मोहन के चाज पर फिल्म चिराग में से निकाल कर निगति निघ्न शस्त्र 1969 का ये गीत।

तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है। रफ़ी साहब की आवाज़ में लता जी भी साथी और हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। ये बंदा जैसे रफ़ी साहब कभी शराब नहीं पीता था, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है किशोर कुमार जी भी शराब नहीं पीता था, लेकिन मुझे पता नहीं पक्का, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल वो भी शराब नहीं पीता था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये गीत गाए हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म कटी पतंग में से हम आपको सुना रहे हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए ओ परफॉर्मिंग स्थानीय रेडियो। जी हाँ, फिल्म कटी पतंग में से निकाल कर। चलिए, माई टू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस इस तरह से

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 97.3 FM। फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो।

आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हमने प्लेयर में एक गीत रखे हैं, क्या ख्याल अगर जाए मैं आपको ये गीत सुनाऊं, फिल्म आदमी में से निकाल है नौशाद अली के साज पर इस तरह से है।

वाह क्या बात है, लता जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया फिल्म आदमी में से निकाल कर हमने चलाए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि आप भी हैं, मैं हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं मैती मुकेश। जी हाँ, मैती मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, फिल्म मर्यादा। फिल्म मर्यादा के गीत हम, चलो हम आपको सुनाते हैं। इस तरह से आ रहा

0: जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, फिल्म मर्यादा में से निकाले हैं। मेरे पास तो ये गीत सीडी पर था इसलिए नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर मैं गलती नहीं कह रहा हूँ कहूँगा, तो ये फिल्म में राजकुमार जी ने काम किए हैं। और लोग हो गए लेकिन सिर्फ राजीव कुमार के नाम मुझे इस वक्त याद है। फिल्म मर्यादा में से हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है कि राजा रानी की कहानी है। देखते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत फिल्म उपहार में से, नेगन तीन एनन सेफन तक।
1: मैं एक राजा

मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने पेश की निकाल कर निगति ए नसीब का ये गीत फिल्म उपहार में से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर हमने चलाए। चलिए देखते हैं, हमने प्लेयर पर रखे हैं लेकिन कहाँ गया ये, तो फिर निकल गया। बहरहाल हाँ आ गया। फिर चलिए हम आपको सुना रहे हैं एवरग्रीन किशोर कुमार जी।

वाह क्या बात है, आपने सुने एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं कि प्यार करने वालों का कभी हार नहीं होता है, इसलिए अगर प्यार करना है, हार नहीं है तो प्यार का इजहार कीजिए अवश्य। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने पेश की ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, अभी तो देखते हैं, जी हाँ अभी थोड़ा समय अवश्य बाकी है। लीजिए इस तरह से आ रहा है, आपकी परछाइयां में से, मदन मोहन के साज पर।

लता जी, मदन मोहन के साज पर हम आपको सुनाए ये गीत। फिल्म आपकी परछाइयाँ में से निकाल कर निकली फिर सस्त का ये गीत, 1974 का ये गीत, ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। जो लोग चुन के हैं मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए, आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत। इस तरह से है,

कि जान चली जाए जिया नहीं जाए, रफ़ी साहेब और लता जी फिल्म अनजाना, फिल्म अनजाना में से निकाले हैं। अब ये गीत हमने पेश किए आप सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए, जहाँ पर आप भी होंगे आपका हृदय से स्वागत है। हमने प्लेन में एक गीत और रखे हैं, जी हाँ, क्या ख्याल है। चलो ये मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म मिलाप में से निकाले हैं, 1972 नेगेटिव 20 का ये फिल्म है, और चलो सुनते हैं इस तरह से।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला, आपको सुनाए ब्रिजभूषण के साज पर हमने पेश की फिल्म मिलाप में से निकाल कर नेगंतिन तो इन सैफ इन 1972 का ये गीत। चलिए अगला नंबर हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है उनके पहली नज़र क्या असर कर गई, चलो लता जी आपको बताएंगे क्योंकि हम तो बता ही नहीं सकते।

उनकी पहली नज़र क्या असर कर गई, लता जी आपको सुनाएं फिल्म अप्रैल फूल। फिल्म अप्रैल फूल में से निकाले हैं निगेती फिर से अस्तक का ये गीत, 1974 का ये गीत शंकर जयकिशन के साथ पर आओ चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम प्लेयर में रखे हैं, क्या ख्याल है देखते हैं। वो दिन याद करो, जी हाँ आप भी वो दिन याद करो और मैं भी वो दिन याद कर रहा हूँ। और कौन सा दिन, कौन सी साल, 1971 का, जी हाँ द मैन विद द गोल्डन वॉइस।

मोहब्बत की कहानियाँ लता जी और द मैन विद द गोल्डन वॉइस आपको सुनाए हैं। फिल्म वो दिन याद करो में से निकाले हैं निकती ए नसीब तक यह शानदार गीत हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम देख रहे हैं प्लेयर में हमने रखे हैं लता जी की, लता जी के गीत है देखा जाए जहाँ तक मेरा, हाँ निकती फैफ शस्त्र का ये गीत है और चलिए हम आपको सुनाते हैं। फिल्म है हिमालय की गोद में से याद, हिमालय हमने कहा था याद होगा हिमालय, जो उस समय सूरीनाम की बात था, मैं कांप था तो एक हफ्सी आया बाहर से भीतर, उन्हें गंगा गंगा एक बात बतानी है, बोलो भाई हमने एक फिल्म देखे हैं कि पोस्टर चपकाया हुआ है, हाँ ये पता नहीं कि दुलिक्स का था या इंडिया ओवरसीज का, क्योंकि इंडिया ओवरसीज का फिल्म में द पारल चलाता था और दुलिक्स का जसोदरा चलाता था, अब मुझे याद नहीं। बहरहाल उन्होंने कहा फिल्म का नाम है हिमालय के खुतमैन। हमने सोचा यार सोचते सोचते कुछ देर बाद याद, क्योंकि गाना पहले आ जाता था सूरीनाम में ना, तो याद आया हाँ निकिती फैफ शस्त्र का ये फिल्म है हिमालय के गोद में। उन्होंने कहा खुतमैन तो बाद में समझा गया कि हाँ गोद में। लीजिए हिमालय के गोद में से निकाल रहे हैं, इस तरह से आ रहा है ये शानदार गीत।

सारे बगिया खिली, ये गीत पेश हुआ लता जी आपको सुनाए फिल्म हिमालय के गोद में से निकाले 1965 का ये गीत निकली फै तक का ये गीत, जहाँ तक मेरा ख्याल है शंकर जय किशन है, लेकिन पता नहीं, बहरहाल अगर गलत हो तो मुझे आप बता देना, शंकर जय किशन के साथ में जहाँ तक मेरा ख्याल है। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक गीत और पेश करने वाले हैं और वो ये है, हमने तो देखे ही नहीं लेकिन चलाते हैं, चलो हम भी सुनते हैं आप भी सुनो।

0: गर तुम भुला न दोगे फिल्म यकीन में से निकाले और हमने पेश किए ऊपर फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो।
1: तो इसीलिए मैं आपसे कहता चलूं, ये बात जो है ना, क्या बात है, हमारे साथियों मिलने बिछड़ने का गम नहीं होना चाहिए, जिंदगी यही आना जाना लगा रहता है। और जो है क्या कहूँ मैं, तो यही सुनाना है आपको ना। और हमारी यानी जी डंकुअल, हमारी इरन जी भैया, खास करके आप लोग के समस्त परिवार को यही कहना है।

फाहुंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहुन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 7 फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

और अनोखो अन अन अखियों की झरों की इसके बाद हम चलते हैं। आप जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, हमारा प्यार आप तक पहुंचे। और चाहे ठंड लगते हो और चाहे गर्मी का मौसम है, रेडियो फाहून आपके साथ है। और धरती पे जहां भी रहेंगे, हमारा तुम्हारा प्यार अमर रहेगा।

हमसे और तुमसे प्यार इतना हुआ है कि साथ में राज बब्बर क्या कहते हैं वो भी सुना जाए।

मिल जो होगा तो और क्या क्या नहीं होगा आपको हम जरूर बताएं। उसके बाद हम चलते हैं वो मेरी नींद मेरा चैन की ओर है।

और ये प्यार करते हैं तो दर्द भी सहना सीख लीजिए, कारण प्यार में दर्द तो जरूर होता है, नींद भी उड़ जाते हैं। और साथी साथी 1982 का एक स्पेशल गजल सॉन्ग फ्रॉम जगदीप

सिंह एक हिट गजल सॉन्ग थे हमारी यार। साथ ही साथ हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया मिस्टर कुमार यानू अलका यागनिक क्या सुनाते हैं यार नहीं कल तक हिट सॉन्ग फॉर जॉनी नंबर वन।

कर दिया और जाने क्यों मुझे मालूम नहीं दोस्तों, अगर आपके मालूम होगा जरूर कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं, मोहब्बत लोग क्यों करते हैं और ये क्यों करते हैं। नैतिकेल लता जी आपसे पूछ रहे हैं, अगर मालूम है तो जरूर बता देना।

मोहब्बत करते हैं क्या आपको ये मालूम हो तो जरूर बताना कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं। तो मोहब्बत कई तरह के होते हैं और मोहब्बत अगर ये आपको मालूम है तो जरूर बता देना। और एक और हम चलते हैं मोहब्बत का सॉन्ग, और आज हम मोहब्बत के प्यार के मूड में हैं। हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू की ओर, और ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए।

कि तुम कोशिश करना और कोशिश भी करना रेडियो फाहुन सुनने को दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला जोंग की बप्पी लहरी का। ये जोंग है आशा जी के साथ में, इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए।

और ये है मूवी मूवी मूवी के नाम क्या है मेरे ख्याल से भाई भाई गीता दत्त इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुनाइए कौन से नंबर ये है।

और ऐ दिल मुझे बता दे तू भी किस पे आ गया है। गीता दत्त का ये सॉन्ग थे हमारे दोस्तों। और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है। और परमाशी मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर सुना जाए।

होगा। मूवी के नाम थे नागिन का ये सॉन्ग, सुपर हिट्स फिल्म थी हमारी दोस्तों। ये भी एक जिपर जिपर एंड जिबर सॉन्ग थे। पद्माशी रफी के बाद में हम आते हैं नाइटिंगेल लता जी और तलत महमूद का। ये बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग है, नीखती होंद शस्त्र का ये गीत है और सुना जाए।

ये सुपर सॉन्ग थे 7000 किशोर दादा, क्या सुनाते हैं एक डुएट के ओर हम लोग आज चला जाएं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शर्मिला टैगोर अपना कला को बहुत ठीक से किया है।

और मैं प्यासा तुम सावन द्वैत सॉन्ग किशोर दादा और नैतिकेल लता जी का और ये सुपर सॉन्ग थे। एक दोस्तों हम चलते हैं एक और हो या आए हैं दूर से, आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सबका आवाज तो जाते हैं।

और दोस्तों इसके बाद तो हम चलते हैं एक सुपर सॉन्ग की ओर। दूसरा आदमी जिसमें इस मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने काम किया है, किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लता जी के साथ। और ये गीत गाते गाते गाते गाते ऋषि कपूर और नीतू सिंह में प्यार हो जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं।

और नजरों से तो कह दिया है प्यार में क्या क्या हो जाते हैं। और अगर आपको प्यार भी हो गया है ये छोटी उम्र में तो ये गीत आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। छोटी छोटी उम्र में क्या क्या ना हो जाता है और वो कभी बांध में पछताना पड़ता है नहीं, बांध में उसको हम पछताते ही नहीं, सोचते ही कि खूब किया है, ठीक किया है।

और छोटी सी उम्र में रोग तो लग जाते हैं हमारे दोस्तों, और जब रोग लग जाते हैं तो वो कभी नहीं, मूवी का नाम है बैराग छोटी सी उम्र में। और नाइटी जी लता जी का ये जोंग थे जिसमें दिलीप कुमार और शायरा मानू ने काम किया है। बाद में जाकर ये दोनों भी शादी कर लिए थे। उम्र में शायरा मानू बहुत ही छोटी थी दिलीप कुमार के आगे, फिर भी छोटी सी उम्र में प्यार तो हो जाते हैं। और कभी कभी हम चला जाते हैं उस ओर जब कभी हम भी 16 साल के थे। आओ सुना जाए तो क्या होते थे उस जमाने में जब हम लोग 16 साल के थे।

17 भी बिट जाएगा और 17 बस बांध में 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो सोचते रहना कि क्या हुआ है। फिल्म बैराग की ओर हम फिर एक बार चलते हैं।

खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

है इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: है इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।
1: ऐसे भी हो

और दोस्तों सारे शहर में अब सा और कोई नहीं है। सारे शहर में फिल्म के नाम बैरांग नीखती होंदित एंड जसन जीवत का ये जोंग है हमारे दोस्तों। तो यहां पर हम चलते हैं किशोर दादा के ओर और किशोर दादा आपको क्या सुनाते हैं।

और दोस्तों देवानंद का ये फिल्म है जो आप लोग को देखना चाहिए, इट्स ही मूवी फिल्म है। तो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर। ये भी एक सॉन्ग है जो चोरी चोरी जो तुमसे मिली, नाइटिंगेल लता मंगेशकर और करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, माइती मुकेश का ये सॉन्ग।

और तुमसे ओ हसीना कभी तो मोहब्बत तो मैंने करनी थी। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है फर्श 1967 के सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं आशा जी की और आशा जी मूवी का नाम पूजा का फूल और आशा भोसले का ये सॉन्ग है।